नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था।

0: दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, नहीं मैं केवल भगवान से डरूंगा। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूंगा और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

0: विविध भारती 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। झरोखा लिखा जोखा विविध भारती से आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस कान, आज भाग 329, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम में ये श्रृंखला चल रही है। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। आज सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार, 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। मिलिंद सबनीस ने इस श्रृंखला को लिखा है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की आज 48वीं कड़ी। चित्रलोक कार्यक्रम 8:30 पर होगा। सुबह 9:30 और शाम 9:30 पर आप सुनेंगे अभिनेत्री आशा पारेख पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग, दिन में 12 बजे समाचार। यादों की महफिल कार्यक्रम 12:05 पर होगा। 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। 2:15 पर दोपहर समाचार। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। दिन में 2:30 पर होगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है यादों की तपिश। इस कहानी का पहला भाग सुनवाया जाएगा। लेखिका और स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।

शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6 बजे समाचार, 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा, 6:35 पर संध्या रंजन, शाम 7 बजे जय माला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें कार्यक्रम का 13वां भाग, रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत रूपक सुनिएगा महानात्मा, लेखन निर्देशन गुरमीत रामल मीत का है।

0: 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, संध्या रात 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा। 9:30 पर अभिनेत्री आशा पारेख पर केंद्रित आज के फनकार। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। विविध भारती से आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस गान आज भाग 329।

युद्धरत कुंभकर्ण का घोर गर्जन सुनकर देवता भी भयभीत हो गए हैं। कंदरा की भांति खुले उसके मुख को श्री राम ने अपने वाणों से भर दिया, फिर भी वो धराशायी नहीं हुआ। वो श्री राम पर प्रहार करने दौड़ा ही था कि उन्होंने एक तीखे वाण से उसका सिर काट दिया। कुंभकर्ण का कटा सिर जाकर रावण के सामने गिरा, जिसे देख वो व्याकुल हो गया। इधर कुंभकर्ण के रुंड को इधर से उधर दौड़ते छटपटाते देख राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और धरती डोलने लगी। श्री राम ने उसके धड़ को दो टुकड़ों में काट दिया। पर्वत खंडों की तरह दोनों टुकड़े धरती पर आ गिरे। ये दृश्य देख देवताओं ने हर्षध्वनि की और प्रभु का गुणगान करने लगे। ये कथा सुनाते हुए भगवान शिव बोले, हे गिरिजे, इस प्रकार कुंभकर्ण जैसे अधम पापी राक्षस को भी प्रभु ने अपने हाथों सद्गति प्रदान की।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, और हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है गायक संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन को। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: शेखर दादा, आज की इस दूसरी कड़ी में हम अपने श्रोताओं को क्या सुनवाने वाले हैं?
2: चूंकि हम लोगों का विषय एक पूरी शताब्दी को लेकर है
1: जी,
2: तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भक्ति के बहुत अलग अलग रंग आए
1: जी, जी।
2: और शुरुआत से ही हमारे यहाँ सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति
1: जी,
2: और उसमें फिर सूफी रंग भी आया, लेकिन 1920 के बाद से 1925 के कालखंड में
1: जी,
2: एक और भक्ति का नया स्वरूप हमारे समक्ष आया, और वो था देशभक्ति का रूप।
1: देशभक्ति रूप
2: कि अचानक पूरा देश जो था वो स्वतंत्रता पाने के लिए एकदम आलोड़ित हो रहा था, कि उनको लग रहा था कि बस किसी तरह हमें ये आजादी मिल जाए। तो देश के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब तो थे ही, और उस समय एक नारा अपने आप देश प्रेम का नारा बन गया था, और वो था वंदे मातरम
1: जी।
2: कहीं भी कुछ भी होता था तो

0: वंदे मातरम की का जयकार लगाकर
1: जी
0: लोग
1: जी
0: आगे बढ़ते थे।
1: यहां तक कि लोग नमस्कार की जगह वंदे मातरम
0: बिल्कुल।
1: कहने लगे थे।
0: और उस समय ये बहुत कम लोगों को पता है, हम सब जो ये गीत गाते हैं ये मूलतः संस्कृत का गीत है,
1: जी जी जी
0: जो बंकिम बाबू ने लिखा था अपने उपन्यास आनंद मठ में,
1: जी
0: और उसकी बहुत सारे लोगों ने धुन बनाई है। पर जिस स्वरूप में वो हमें राष्ट्रगीत के रूप में हम सब भारतवासी उसे गाते हैं, उसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी।
1: जी
0: और उन्होंने, ये भी संयोग की बात है कि देशभक्ति का ये गीत राग देश में उन्होंने बांधा था,
1: आधारित
0: तो मैं
1: है
0: चाहता हूं कि श्रोताओं को मैं थोड़ा सा राग देश का एक
1: जी।
0: थोड़ी सी झलकी

0: क्या
1: ये
0: बात है।
1: राग देश का रूप है। हमारे यहाँ रागों के नाम भी बड़े अद्भुत रखे गए।
0: जी,
1: देश भी एक राग है, एक राग है देसी, बिल्कुल अलग उसका
0: जी
1: रूप है। फिर हमारे यहाँ शहरों के नाम पर भी, क्योंकि मैं
0: जी
1: राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ,
0: हाँ
1: तो हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों के नाम और गांवों के नाम पर भी राग बने हुए हैं।
0: जी
1: मुल्तानी बना हुआ है,
0: जी
1: वृंदावनी सारंग है,
0: जी
1: भोपाली है,
0: हाँ
1: जौनपुरी है।
0: जी
1: तो हमारे यहाँ ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर कोई तेलंगाना का विद्वान था तो उसने अपने एक राग बनाया, उसका नाम तिलंग रखा। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सारे स्वरूप आए, और जब आनंद मठ का ये गीत लोगों के समक्ष आया तो हर एक कार्यक्रम में ये गीत गाया जाने लगा, और हमारे उस पूरे स्वातंत्र्य आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गया। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की धुन, ये श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी एक धुन बनाई थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर
0: जी
1: जी ने,
0: जी
1: एक धुन बनाई थी जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने,
0: जी
1: और एक और धुन बनाई थी उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले आप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये धुन सुनिए,
0: जी
1: क्योंकि इतनी सुंदर ये धुन है कि
0: जी
1: पिछले 100 वर्षों से भी अधिक कालखंड से ये हमें आंदोलित करती है। सभी श्रोता आनंद लें। वंदे मातरम।
0: जी

0: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए आप अपने श्रोताओं को अब क्या सुनाएंगे।
1: मैं चाहता हूं कि मैं यही गीत आपको दूसरे स्वरों में सुनाऊं, क्योंकि विशेषता हमारे भारतीय संगीत की यह है, बहुत सारी रचनाओं के आपको बहुत सारे रूप मिल जाएंगे।
0: जी जी,
1: तो वंदे मातरम के भी बहुत सारे रूप हैं। तो उनका एक और आदरणीय हेमंत कुमार जी द्वारा फिल्म आनंद मठ के लिए ये रचना रिकॉर्ड हुई थी और लता मंगेशकर जी की आवाज में है, और वो रचना भी जब आप सुनते हैं तो आपके एकदम रोम रोम
0: खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं यही रचना।

0: आनंद मठ फिल्म की ये रचना अभी आप सुन रहे थे।
1: ये हेमंत दा ने जब रचना की थी तो ये राग भैरवी में इसकी रचना की है, पर आम तौर पर जो भैरवी का रंग होता है
0: जी
1: वो रंग उन्होंने नहीं रखा
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ भैरवी में ज्यादातर ठुमरियां होती हैं या भजन होते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वंदे मातरम की रचना की मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनुपम है। मैं चाहूंगा श्रोता इसको बहुत गौर से दो बार, चार बार, दस बार सुने, क्योंकि इस तरह से...

0: वंदे मातरम, तो एक समूह गान का भाव भी आए, देशभक्ति का भी भाव आए,
1: जी
0: और फिल्म की जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से एक कॉम्पोजिशन बने।
1: जी
0: तो हेमंत दा को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक अद्वितीय रचना बनाई है। ऐसी रचना हेमंत दा के रेपर्टायर में मुझे दूसरी दिखाई नहीं देती।

0: जिसको मैं इस रचना के साथ में रख सकूं कि हेमंत दा ने इस तरह की एक और रचना बनाई। वंदे मातरम जैसी धुन हेमंत दा ने केवल ऐसी ही बनाई और यहीं पर उसका प्रयोग किया है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद शेखर दादा इस जानकारी के लिए। और अब आज की इस कड़ी को यहीं पर समेट लेते हैं और कल तीसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे संगीत सरिता में। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। कल हाजिर होंगे तीसरी कड़ी के साथ तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में इस गाने से। फिल्म का नाम जागृति है, प्रदीप के बोल और हेमंत कुमार का संगीत।

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है।

0: मैं फिल्म कार्तिक मानशी धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती से भूली बिसरी गीत कार्यक्रम चल रहा है और अब हम आपको सुनवा रहे हैं परिवार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हुस्न लाल भगतराम का संगीत था और मोहम्मद रफी का स्वर। ये भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांस

0: गा रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध

आइए सुने हम हैं रही प्यार के। हसरत जयपुरी के बोल।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में

0: आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर

0: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के।

0: छोटे नवाब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। गीत शैलेंद्र का, संगीत आर डी वर्मन का।
1: ये कली जब

0: इसी के साथ आज का हम ही रही प्यार के कार्यक्रम अब खत्म होता है।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन।

0: रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की साल

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन

0: पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
1: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
3: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
4: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
3: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
3: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना है, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोक सत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयर क्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे,

0: पानीपत के सिवाच आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हरा कर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 48वीं कड़ी।

संविधान समिति के समक्ष नए सिरे से प्रदर्शन के समय मास्टर कृष्ण राव ने वंदे मातरम की अलग अलग प्रकार से धुन रिकॉर्ड की थी। मार्चिंग सॉन्ग, ध्वजारोहण, ध्वज वंदन, ध्वज अवरोहण के समय राष्ट्र गीत के रूप में बजाने के लिए कुछ निश्चित सेकंड की ध्वनि रिकॉर्डिंग पाश्चात्य पद्धति से रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसी के साथ झिंझोटी राग की मूल संगीत रचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया था। संसद में मास्टर कृष्ण राव ने ये ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्ष अपने गायन से वंदे मातरम के प्रदर्शन प्रस्तुत किए।

0: ये प्रदर्शन अत्यंत प्रभावी हुए। अधिकांश संसद सदस्यों को ये संगीत रचना और वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में स्थान स्वीकार्य था, परंतु दुर्भाग्य का आघात एक बार फिर यहाँ वंदे मातरम पर हुआ। प्रदर्शन प्रस्तुत होने के बाद पंडित नेहरू ने मास्टर की प्रशंसा की। वंदे मातरम को हम राष्ट्रगीत के समान स्थान देंगे, ऐसा भी कहा। 24 जनवरी 1950 की संविधान समिति की बैठक में कोई मतदान न होते हुए उस पर की चर्चा को टालकर संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को राष्ट्रगीत का स्थान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा दिए जाने की घोषणा की। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा वक्तव्य दिया,
1: जन गण मन इन शब्दों से बना गीत और संगीत भारत का राष्ट्रगीत है।

गीत के शब्दों में सरकार को समय पड़ने पर आवश्यक बदलाव करने का अधिकार रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का सम्मान दिया जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही रहेगी। मुझे लगता है इससे सदस्यों को संतोष होगा। इस वक्तव्य के कारण जनगण मन को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगीत और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। मास्टर कृष्णराव कुछ निराशा के साथ पुणे लौटे, पर उस निराशा में भी इस बात का संतोष था कि वंदे मातरम को नजरअंदाज नहीं किया गया। मास्टर कृष्णराव का वंदे मातरम का अभियान वहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी विभिन्न सभा समारोहों में वे वंदे मातरम गाते रहे। शास्त्रीय संगीत की महफिल का समापन करते समय भी वे आग्रह पूर्वक वंदे मातरम का गायन करते थे। 1952 में चीन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से गए कलाकारों में मास्टर कृष्णराव, ज्योत्सना भोड़े, हीराबाई बड़ोदेकर जैसे नामी कलाकार थे। पेकिंग यानी आज के बीजिंग में हुए कार्यक्रम के अंत में इन सभी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया था। मास्टर कृष्णराव के बाद उनके शिष्य पंडित राम मराठे भी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम अवश्य गाते थे।

मास्टर कृष्णराव की तरह वीडी अंबेडकर ने भी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए प्रयास जारी रखे थे। नागपुर के वीडी अंबेडकर संगीत विशेषज्ञ तो थे ही, पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। 1927 में गो बैक साइमन के नारे लगाने पर लाठीचार्ज झेला। 42 के आंदोलन में भी उन्होंने भेष बदलकर गुप्त पत्रिकाएं बांटने का काम किया। प्रभात फेरियों में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नची केलकर, साने गुरुजी, भाई परमानंद जैसे कई लोगों के सामने उन्होंने अपनी खंबावती राग में की गई रचना सुनाई थी। केंद्रीय प्रसारण मंत्री काका साहेब गाड़गिल ने अंबेडकर को दिल्ली बुलाया और संविधान समिति के सामने प्रस्तुति का अवसर दिया। मुख्य सचेतक सत्यनारायण सिंह, पीसी रे, पट्टा भी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी और संविधान समिति की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर उपस्थित थे। नमूने के तौर पर बनाई गई अलग अलग अवसरों पर बजाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाकर दिखाई गई। उस पर डॉ

0: बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी जगह से खड़े होकर बोले,
1: आई विल बी द फर्स्ट मैन टू परचेज द रिकॉर्ड इफ यू सिंग इट इन द सेम ट्यून विच यू हैव संग जस्ट नाउ। वेरी इम्प्रेसिव।
0: आगे यही मिस्टर खंबावती राग की रचना वरिष्ठ गायिका गान तपस्विनी मोगूबाई कुर्डिकर की आवाज में रिकॉर्ड की गई। मोगूबाई की आवाज में ये राष्ट्रगीत की गंभीरता को बनाए रखने वाली सुंदर रचना है।

0: दिलीप कुमार रॉय, वीडी अंभईकर, मास्टर कृष्ण राव के संगीतमय प्रयासों से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा मिलने में निश्चित रूप से मदद हुई। वंदे मातरम ने जैसे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इतिहास रचा, वैसा ही इतिहास इस गीत की संगीत यात्रा का भी है।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 48वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

आइए सुने चित्रलोक। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज 2 अक्टूबर का दिन है, महात्मा गांधी की जयंती। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। महात्मा गांधी के अलावा आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद कर रहे हैं। फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणव बिस्वास की आवाजें। स्वानंद किरकिरे की बोल।

लगी रहो मुन्ना भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना। हिंदुस्तानी सिनेमा की एक बहुत ही अलबेली फिल्म के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। ये फिल्म लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा से बनी थी। दरअसल फिल्म शहीद का प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा था और शास्त्री जी ने मनोज कुमार से यह कहा था कि क्या मेरे नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती। मनोज कुमार ने मुंबई लौटते हुए कुछ रजिस्टर और कुछ पेन खरीदे और फ्रंटियर मेल में दिल्ली से मुंबई का सफर करते हुए उपकार फिल्म की कहानी का पूरा ढांचा तैयार कर लिया। हिंदी सिनेमा का एक इतिहास रच गया। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी ये कालजयी फिल्म उपकार।

0: उपकार फिल्म का ये गीत आपने सुना, गुलशन बाबा के बोल थे, कल्याण जैनन जी की तर्ज, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: नाची गाई सब के मन बहलावा भैया।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: दिन की इस भागदौड़ में सुबह की 8:47 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गीत।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत था, संगीत ए आर रहमान का था, फिल्म का नाम था लगान। शान की आवाज, अब्बास टायर वाला के बोल, अनु मलिक की तर्ज, फिल्म का नाम मुन्ना भाई एमबीबीएस।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
4: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

अर्जी वर्मन की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा फिल्म शोले का गाना आपने सुना। और ये प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दीपाली सहाय की आवाज, फिल्म का नाम मैं वापस आऊंगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

0: गाना है।
1: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची। पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल देके देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना दिया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख

दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

0: निर्देशित फिल्म कारवां। और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हा।

हिट फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रही, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रही और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रही। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक के निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारीख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांताक्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी शाम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 0228670288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 0224002462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
0: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
1: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो फिर किसान भाई

0: मक्का की फसल लगाएं।
1: अच्छा, अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर हैं?
0: जी, फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है।
1: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर,
0: अच्छा
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये
0: जी
1: बीकानेर का ही उपनगर है,
0: जी
1: बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा, क्या बात है। और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और

0: वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजाज धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राजा का ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही
1: सर,
0: है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
0: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे
0: अच्छा,
1: और आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाए आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो पे सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: अच्छा ये बताइए, खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती? फिर
1: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है,
0: अच्छा,
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं, जो
0: हाँ
1: नुकसान हो गया है
0: जी जी समझ
1: जो
0: रहे हैं,
1: थोड़ा
0: मौसम
1: बहुत।
0: खराब हो गया ना अचानक, इसलिए।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: थोड़ा
0: हमें बताएं,
1: हमारा।
0: विविध भारती
1: हाँ
0: इतने
1: जी
0: ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम वो जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ

0: आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जाती थी, फिर तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ
1: जी।
0: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए की तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो 7 क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से बिजली बल्ब, जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
1: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
0: जी आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
1: अच्छा बढ़िया।
0: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा
1: अच्छा।
0: ही आ जाता है सुनकर।
1: अरे बहुत शुक्रिया। तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
0: गाना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
1: हाँ बस ऐसे ही जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे, ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना।
0: हाँ सर
1: सुनिए ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी

0: बारिश अभी बंद है।
1: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
0: हाँ, पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
1: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
0: सर, मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
1: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
0: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
1: अच्छा, ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
0: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
1: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
0: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना उनके सराफे, मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
1: हाँ,
0: वो भी सुनते हैं।
1: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
0: सर हमारे यहाँ पे सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का केस वगैरह अच्छा चलता है।
1: और वो कचौड़ी?
0: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और समोसे, ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
1: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ पर
1: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
0: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
1: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
0: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
1: बहुत सही।
0: ये गाना सुनना था सर मुझे।
1: कौन सा?
0: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
1: ओके,
0: आवाज में
1: क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ सर, भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में।

0: अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके
1: सर बढ़िया है। मैं टेलर हूँ
0: जी।
1: और ब्रज आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ,
0: जी
1: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 100-200 फोन लगाए होंगे सर, कम से कम।
0: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
1: और जितने भी आरजे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हो, शहनाज जी हो, चाहे ममता जी हो, जितने भी आरजे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
0: और मेरे से
1: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
0: अच्छा
1: सर क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाए, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
0: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो
1: जी
0: गया है?
1: सर, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है। तहजीब
0: नहीं, लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर।
1: सर, तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
0: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान,
1: जी सर, जी सर,
0: वो जलवे कायम है।
1: हाँ सर, जलवे कायम है, वो पान की गुमटियां भी कायम है, और नमक वाली चाय भी कायम है, और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर वो।
0: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
1: जी जी सर,
0: क्या बात है।
1: सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म
0: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर, यूँ चलना देना यूँ छोड़कर।
0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की
1: जी
0: आवाज
1: सर,
0: आपके लिए ये गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर,
0: बोलिए।
1: मैं गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत
1: तो।
0: बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह ये रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो बहुत जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना?
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना,
0: जी
1: तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा
0: सखी,
1: हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश,
0: अच्छा सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है।
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश।
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
1: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हालचाल भैया?
0: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में।
1: क्या हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया?
0: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
1: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
0: बस में थी सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
1: ए दद्दा रे, सो सब ठीक ठाक है, सलामती
0: हाँ
1: है?
0: सर, सर फट गया था सर, अभी 2 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर।
1: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल
0: जी
1: लोग
0: सर।
1: गाड़ियां वाड़ियां ठीक से नहीं चला रहे मालक,
0: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है।
1: है ना? हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकलें तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं। और का
0: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
1: दूसरी बार? हमें तो याद नहीं है।
0: सर अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे अमियां लग गई आम में कि नहीं लगी।
1: अरे हो, अमिया अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई।
0: हाँ जी सर, हुई थी।
1: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल? आधा बारिश हो गई?
0: हाँ हाँ सर।
1: अच्छा,
0: सर वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
1: अच्छा तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
0: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
1: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
0: जी सर।
1: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
0: जी सर, उड़द।
1: हो नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
0: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
1: नहीं थोड़ी थोड़ी जाना थे भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए हैं।
0: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं, तो आप तो जानते ही होंगे।
1: हो थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
0: जी सर।
1: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही है, ये बताओ।
0: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर कुमार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर।

निभाला चंदाना, ये 16 साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

झम झारी जग धारी जाने जाने को गुजारी दाखो झारी गेट झम झारी जग धारी जाने जाने को झम झारी जग धारी जाने जाने को।

हमें मानो गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना। हमें मानो गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है, बिल्कुल आपकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सफर का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और कई वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़ टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर ये।
0: हाँ।
1: और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा,
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूं होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा,
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई। बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है, किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइन है
0: इरशाद।
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: बहुत शुक्रिया।
1: और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं,
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर,
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेटांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
1: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिसरे गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
0: हाँ जी,
1: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों का राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
0: जी,
1: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
0: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया,
0: वाह भाई वाह,
1: तरह के गाने के बोले सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 40024662। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: रंग तरंग
2: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत

लता मंगेशकर की आवाज़ में मीराबाई का ये भजन आपने सुना। इसे हमने एल्बम गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर से आपको सुनवाया। आइए अब सुनते हैं हनुमान अंश फिल्म से ये पारंपरिक रचना। ऋषि पाठक की बोल है, माफ़ कीजिएगा, ऋषि पाठक की आवाज़ और उन्हीं का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कोई जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में हसर जयपुरी का कलाम आपने सुना। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का ही संगीत और इसे हमने लिया एल्बम गुलदस्ता से।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुषि। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
2: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंकर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कतील राजस्थानी का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे मिताली सिंह के आवाज में। भूपिंदर सिंह का संगीत मोहब्बत एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द खजाना कॉन्सर्ट। इस एल्बम से आपने सुना अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणव बिस्वास की आवाजों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आपने सुना। स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, संगीत संदेश सांडेले का।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुषि। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
2: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सोचा ना था इस एल्बम इस गीत से आप माफ कीजिएगा इस फिल्म से आप सुन रहे थे केके की आवाज में गीत इरशाद कामिल के बोल संदेश शांडिल्य का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: वेल डन अब्बा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इला अरुण और साथियों की आवाजें, इला अरुण और डेनियल जॉर्ज के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत। कल इला अरुण भी होंगे हमारे साथ लाइव विविध भारती की सालगिरह के जश्न पर।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। मिर्ज़िया डेयर टू लव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मीमी खान और शंकर महादेवन की आवाज़ें, गुलजार के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति

0: कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सचिन देव बर्मन का संगीत मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से ये गीत आपने सुना।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, शंकर जयकिशन का संगीत लव इन टोक्यो फिल्म के इस गीत में। आपको बता दें आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रकार की बातचीत की ये एक लंबी श्रृंखला है जिसकी आज 13वीं कड़ी आप सुन सकते हैं। और रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा रूपक महान आत्मा, लेखन और निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। इस वक्त विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर आज उन्हीं की फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में शामिल है।

0: तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री आशा पारेख अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

जानना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

लता मंगेशकर की आवाज में जिद्दी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मेरे सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, ओपी नैयर की तर्ज।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
2: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री आशा पारेख की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: फिर वही दिल लाया हूँ। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए।

0: विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज पर ये गीत आप सुन रहे थे असर जयपुरी के बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म कन्यादान।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दो बदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। रवि की तर्ज शकील बदायूनी के बोल। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आनंद बख्शी के बोल के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता देते हैं आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाएंगे आज के इस कार्यक्रम में।

तो आज की इबारत है, गम दर्द तन्हाई ये भी तो जीवन का हिस्सा है। कोई रात की तन्हाई में आवाज न देने की बात कहता है तो कोई दर्द हद से गुजरने पर गाने लगता है। दुख दर्द को जीने और उससे लड़ने के सभी के अपने अपने तरीके होते हैं। दर्द हमेशा दुख भी कहाँ देते हैं। दर्दे दिल की बातें यूं ही तो आशिक नहीं किया करते। मिलने की खुशी के साथ भी तो जुदाई का गम जुड़ा ही होता है। सुनहरे सपनों के टूट जाने का डर भी तो मन में यूं ही समाता है। हर खुशी एक डर साथ लिए आती है कि वो कहीं खो ना जाए, बीत ना जाए। जब कोई खूबसूरत याद या खुशी बीत जाती है तो हम उसके लौट आने की कामना भी करने लगते हैं। बीते हुए दिन क्या कभी वापस आए हैं? खुशी को बचाए रखने की चाह में हमने वो पल भी तो डर डर के ही बिताए हैं। वही दुख के हर पल को हमने भरपूर जिया है। हर आने वाला पल जाने वाला है ये जानते हुए भी हर दुख को ज्यादा से ज्यादा जीते हैं और खुशी के लम्हे को डर कर। क्या आपका भी यही है नजरिया? दुख दर्द और गम आए तो आप कैसे करते हैं उसका सामना? क्या है आपके जीवन का मूल मंत्र? जरा हमें भी बताना। ये है आज की भारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं कई शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। और आपने बहुत सी बातें लिखकर भेजनी भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ हमारे साथियों ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन किया है उन महापुरुषों को। हम भी विविध भारती परिवार की ओर से नमन करते हैं उन पुरुषों को, महापुरुषों को। और साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और आपकी बातें तो हम तक पहुंच ही रही, लेकिन एक बात जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि किस बात पर सबसे ज्यादा दुख आपको होता है, ये हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हमने आवाज ही किसकी है पहचानने के लिए कहा था और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हमारी गलती ना हो उस समय यदि कोई गलत ठहराने लगे तो बड़ा दुख होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्म से लेकर नदी होने तक किसी न किसी को बिछड़ने का डर, जब दर्द हद से गुजर जाए तो परिस्थिति हो या इंसान को तोड़ देती है और सारे दुख दर्द को गले लगाकर खुद को मजबूत बनाकर इंसान जीने लगता है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, हम बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया है हमें गम और दर्द के बारे में और किस तरह से वो उससे निजात पाते हैं। हमारे एक साथी कहने गम आने वाली खुशियों की आहट देता है, दर्द जख्म के ठीक होने की राह देता है, तन्हाइयों का तो क्या जनाब वो खुद को खुद से मिला देता है। गम दर्द और तन्हाई आने वाली खुशियों का गुलदस्ता हो सकता है, आने वाले पल पर भरोसा रखिए कुछ भी स्थायी नहीं होता। क्या ही खूबसूरत बात हमारे साथियों ने लिखी। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि इन दिनों मेरा इन्हीं से पाला पड़ा है, दर्द गम और तन्हाई कह रहे हैं। तो हमारे आज का ये कार्यक्रम सांत्वना का एक रूप होगा, अब इंतजार है दिन के 1 बजने की। तो भाई हम इन्हें बिल्कुल सांत्वना तो देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जैसा कि हमारे साथी ने लिखा कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं, बीत ही जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कहने के संसार के रचयिता ने हर इंसान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसके जीवन में सुख और दुख आते ही हैं, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सुपरस्टार हो या क्लैब बॉय, हर इंसान को सिर्फ सुख ही सुख मिले तो कौन परमात्मा को याद करेगा। इसलिए दुख के समय सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर को ही याद करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। ये बात भी इन्होंने अपने साथ में लिखी है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जीवन में दुख और दर्द तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें दुख दर्द तन्हाई और गम की परवाह न करते हुए उस पल को आनंदमय बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि जैसे कड़ी धूप के बाद सुकून देने वाली छांव आती है ऐसे ही हर दुख और दर्द हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए हमें सुकून भरे उस पल का इंतजार करना चाहिए। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमें ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपने गम से हाथापाई नहीं कह सकते, अपने गम से किस तरह से आप निजात पाते हैं। क्या पूरे वक्त, कई लोगों की आदत होती है कि वो पूरे वक्त दुख में डूब जाते हैं पूरी तरह, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जब भी बड़े से बड़ा दुख भी आए तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप किस में समझते हैं खुद को इन दोनों ही कैटेगरी में से? और हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और किसी ने इसे लिखा।

0: आशा भोसले की आवाज में हम साया फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा शेवन रिजवी ने, ओपी नैयर का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने हमें दिया। हमारे एक साथी कहने के दुख दर्द में विविध भारती हमारा साथी रहता है, और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गम भी मिला, दर्द भी मिला, तन्हाई भी मिली, जिंदगी की राह में हर रंग की परछाएं भी मिली, हमने मुस्कुराकर हर जख्म को सीने से लगा लिया, तभी तो इस सफर में हमें खुद से मुलाकात भी मिली। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गमों की बातें जो हो रही हैं, तो कह रहे हैं कि खुशी और दुख हमारी जिंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, लेकिन दुख आने पर लोग निराश हो जाते हैं। मेरा मानना है कि दुख इंसान को सबसे अच्छा साथी होता है, दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और अपने पराये की पहचान भी करवाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, वक्त की दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी के समय पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और दुख के वक्त पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, मतलब जीवन में कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, रात के बाद सुबह आती ही है, दर्द दुख और तन्हाई भी हमारे लिए एक नई ऊर्जा, उम्मीद और आशा लेकर आती है, खुशी तलाशने पर जिंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती है। वहीं हमारे साथी कहने की जिंदगी में हर पल को खुशी से जी लेना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं, पर कुछ यादें आखिर तक साथ निभाती है, और एक ऐसी ही याद बनने वाली है कल विविध भारती के सालगिरह के जश्न पर। तो सुनते एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

विविध भारती के इस जश्न में तो आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में, और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल लाइव भी, जिन्हें शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, जैसा कि हम रोजाना सुरीला सफर कार्यक्रम में ही करते हैं। लेकिन कल मौका खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मौका आपको मिलता रहेगा, और हमारे साथ कई सितारे होंगे जैसे कि ईला अरुण और तिग्मांशु धूलिया और साथ ही अनु मलिक।

भी, तो इनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। क्या पता आपके सवाल शामिल हो जाए और उनका जवाब दें आपके ये चहेते सितारे। फिलहाल विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम जारी है और हमारे एक साथी ने लिखा कि आज 2 अक्टूबर केवल तारीख नहीं बल्कि भारत के 2 महान सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को याद करने का दिन है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है जो दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी और अहिंसा का मार्ग हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा बन देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इन महापुरुषों की जो सीख है उन्हें अगर हम अपने जीवन में ले आए तो सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम एक संयमित जीवन जीना सीख जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब दिल को सतावे गम तब छेड़ सखी सरगम, सात सुरों में बड़ा ही दम है, बहते आंसू जाए थम छेड़ कोई सरगम। ये गाना सुनने पर जब आप बहुत तकलीफ में है तो सचमुच गाना दिल को बेहद सुकून देता है। सुर की मधुरता उनके शब्द आपको जख्मों पर मरहम के समान लगते हैं और आप उसमें खो जाते हैं। सारी नकारात्मकता आपकी आंसुओं के साथ बह निकलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो भाई ऐसा ही एक सकारात्मक गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म का ये गीत है, किसने लिखा, आवाज तो आप पहचान ही लेंगे।

0: समझौता फिल्म का ये गीत इंदिवर के बोल, कल्याण चौहान जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब कोई वादा करके मुकर जाता है तो मुझे दुख होता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, स्पष्ट रूप से इनकार क्यों नहीं कर देते। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां उनकी भी ऐसी होती हैं कि वो एक वादा तो करते हैं लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाते, तो वो बातें, वैसे आपका कहना तो ये सही है कि अगर वो बातें करते हैं तो उन्हें सीधे सीधे आपको बता देना चाहिए कि भाई ये कुछ परिस्थितियों की वजह से हम उसे नहीं निभा पा रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं, केवल धैर्य से काम लेते हैं, दुख सुख हर परिस्थिति में, सुख में अति उत्साह नहीं दिखाते, पता है कुछ समय बाद दुख तो आएगा ही, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, जो भी अगर उस वक्त हमारे साथ सुख है तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, और अगर दुख है तो धैर्य और संयम से ये सोचते हुए कि ये दिन बीत जाएंगे और हम आगे जरूर आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को हौसला देकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सुख में हम ज्यादा सुखी ना हो कि भाई ये दिन बीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक डर ही हुआ कि हम अपने सुख को ठीक से नहीं जी रहे, उसका आनंद नहीं ले रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे रात की तन्हाइयों में आवाज देकर मेरी नींद खराब अगर कोई कर देता है तो फिर सोने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे नींद आती है और दुख से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह के मजाहिया कमेंट भी हमारे साथी कर रहे हैं और शायद इसी तरह वो अपने जीवन में एक हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बनाए रखते हैं, और फिर ऐसे वक्त में तो दुख बिल्कुल भी आसपास नहीं फटकता, क्योंकि लोगों के लिए भी वो एक चहेते मित्र बन जाते हैं, जहां पर वो अपनी इन बातों से लोगों का जो मन है वो हल्का रखते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख जीवन की पहचान होता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कहने के गम, दर्द और तन्हाई, इन सबको साधना बड़ा कठिन काम है। वर्तमान में रहते हैं तो बीते समय का हम पछतावा ही करते रह जाते हैं, आज के समय को गंवाते हुए भविष्य की चिंता में हम डूबे रहते हैं और सोचते हैं हम समय के साथ चल रहे हैं, मगर दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। बस जिस क्षण हम समय की टंकार पहचान लेते हैं तब सब ठीक हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में खुशी है तो गम भी है, खुशी स्थायी नहीं होती और ना ही गम, इसलिए खुशी को दिल से अपनाने की जरूरत है, डर से मन अशांत होने लगता है। दुख दर्द तन्हाई बिछड़ना ये जीवन का हिस्सा है और इसे भी धैर्य से समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि जीवन में इतने दर्द मिले हैं कि उनको याद करके सिर्फ आंसू निकल आते हैं, बट इन दर्द से, इन गमों से जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो उस हौसले को याद किया कीजिए तो आपके चेहरे पर जरूर एक मुस्कान आएगी, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जिंदगी में गम दर्द और तन्हाई से भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करना ही जीवन जीने की कला है। और आगे वो कहती हैं कि जैसा कि मशहूर पंक्तियों में कहा गया, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, ये तीनों रात के उस अंधेरे की तरह हैं जहां जिसके बाद आने वाली सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यदि आप इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो इसे एक पड़ाव माने, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन पहले सुनाते हैं कल के कार्यक्रम के लिए जुड़ा एक संदेश और उसके बाद कार्यक्रम में गीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: अपनी नाची गाए सबके मन बहलावा रे भैया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात गमों की, दुखों की और साथ में इनसे निपटने की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है उस पर हो रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया में दुख होता है जब मैं किसी के कई पोस्ट को लाइक और कमेंट करता हूं, अगर वो मेरे पोस्ट पर कमेंट तो दूर, लाइक करना भी गवारा नहीं समझते और टेक्स्ट कमेंट को टेक्स्ट में जवाब न देकर सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। तो और साथ ही ये कहते हैं कि दुखों को कम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सोशल मीडिया है, व्यस्त रहें, दुख टकरा टकरा कर भाग जाएगा।

भाई यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी के पोस्ट को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और वो आपकी पोस्ट को कमेंट या लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि आपने लाइक और कमेंट तो अपनी मर्जी से की है, किसी ये लेन देन तो नहीं है। अगर आपको किसी की पोस्ट या कमेंट अच्छी लगती है और आप उसे लाइक करते हैं, तो वो आपका काम है, आपने उस काम को खत्म कर दिया, तो कर्म आपने कर लिया। लेकिन उसके लिए किसी फल की चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो कमेंट आपकी जो है या पोस्ट जो आपकी है वो लाइक करने लायक ना लग रही हो, या उन्हें लग रहा हो कि मैं बाद में लाइक करूंगा, व्यस्त हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपना दिल जलाना है तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया आपके लिए दुख का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन आप अपना कर्म करते जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उसे लाइक कीजिए, कुछ कहने का मन करता है तो कमेंट कीजिए, और बड़ी ही आसानी से आप इस चीज से उबर जाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने में आपका मन भी लग जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के दो पहलू हैं, एक गम एक खुशी, ये दोनों समय में विविध भारती हर पल साथ रहती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है, जीवन में कुछ भी नहीं ठहरता, जो आया है सो जाएगा, गम हो या खुशी कुछ नहीं रुकता, आने वाला पल जाने वाला है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं आगे की बात कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना जाने बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं हर समय बुरा ही बोलते हैं, बुरा तो सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर अब केवल चुप रहते, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। भाई चुप रहना ही यहाँ सही है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, जिस बात से हम भी सहमत हैं। हम महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते हैं जानते हैं, तो हम उनके जैसे ही या उन्हीं की तरह हम पूरी तरह से नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जीवन और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। लेकिन उनकी जो सीख है उसे लेकर हम अपने जीवन और व्यक्तित्व को कुछ बदल सकते हैं, अच्छा और सकारात्मक कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवा दें। बताइए किस फिल्म का गीत है, लिखा किसने है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहने कि आमतौर पर हम खुद का घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्टेशन, एसटी स्टैंड, बस, रेल, रास्ते, सार्वजनिक स्वच्छता घरों को हम लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। इस बात का अफसोस होता है और दुख होता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख और बादल एक जैसे होते हैं, जब तक बरसते नहीं तब तक हल्के नहीं होते। जीवन के दायरे में अनेक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है जब गम, दर्द और तन्हाई का एक साथ सामना होता है। कुछ पीड़ाएं इतनी वेदना देती हैं कि अश्रु की धार भी अपने साथ नहीं बहा पाती, बस हृदय के किसी कोने में चुपचाप ठहर जाती हैं। जीवन ऐसा ही सारा खेल मानव मन की कल्पना का है। वहीं हमारे साथी कहने कि जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल होता है तो वो अपने में क्रोध से युक्त स्वयं को पाता है, जो दुख का मूल कारण होता है। यदि ऐसे ही माहौल में ये गीत मस्तिष्क में आ जाए फिर कहने ही क्या कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब गलती नहीं होती और कोई इल्जाम लगाए तो दुख होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बात जीने की चली है तो मेरी जिंदगी के 44वें साल तो खुशियों में बीते, तब हमें गमों का आभास भी नहीं था, इसलिए इसकी जरा भी परवाह नहीं की। ये वक्त भी बदल जाएगा। अब जब वक्त एकदम पलट गया तो गमों की परवाह हो रही है। यही परवाह हम उस समय किए होते तो ये गम इतना तकलीफ ना देते। अब तो फिर एक इंतजार लिए जा रहे हैं कि वक्त फिर बदलेगा। अब कब बदलेगा यही पता नहीं। तो जरूर बदलेगा वक्त आपका भी, हम ये कहते हैं, क्योंकि वक्त की तो ये आदत ही होती है, बदलता ही है और बीतता ही है। कभी भी दुख के जो वक्त है वो पूरी तरह उसी तरह नहीं रहता, बस जरूरत है कि हम उससे बाहर निकलें। तो आप हमें ये बताइए कि अगर कभी आपको दुख हुआ तो आप क्या करते हैं? गम और दुख भरे गीत सुनकर और दुख में डूब जाते हैं या सकारात्मक गीत सुन के अपने मन को बदलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या दुख में बैठे रहते हैं, दुख को आत्मसात कर लेते हैं, या सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, मन को बदलने की कोशिश करते हैं? ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको एक ऐसा ही गीत सुनवाते हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को फिल्म गीत के लिए फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम बातें कर रहे हैं कि अगर हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह से उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुख आए उसके बाद सुख आए, दुखी वाले दिनों को नहीं बोलना चाहिए, उसे प्रेरणा मिलती है। जब दुख होता है तो अपने एक पुराने मित्र को याद कर लेती हूँ, उसकी अच्छाई को याद करके मन को शांति मिलती है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। एक और साथी हैं कह रहे हैं, जब किसी दुख या दर्द से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसे किसी के साथ साझा करने के बजाय एक काम करता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत सा तालाब है, वहां तालाब के किनारे बैठता हूँ, फिर अकेले जी भर कर रोता हूँ। उसके बाद हमारे गांव में बेसहारा राह भटके हुए बच्चों के लिए एक रिमांड होम बना है, उन बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाता हूँ। उन बच्चों को मेरा गाया गीत सुनना अच्छा लगता है, उन्हें गाने सुनाता हूँ, किशोर दा के गाने, और ये सब चक्कर में मेरा दुख दर्द मुझसे किनारा कर लेते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ईश्वर करे विविध भारती श्रोता परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रहें, दुख भरे दिन कभी ना आए, ऐसी कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दुख और सुख बने ही रहते हैं जीवन में, ऐसा भी हम कहना चाहते हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप सभी के साथ से हमारे जो भी दुख हैं दर्द हैं वो सब हम से दूर हो जाते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि श्रोतागण आज के गीत बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत बार दुखी होती हूँ तो दर्द भरे गीत सुनती हूँ, अगर कुछ खुशी हो तो खुशी वाले गीत सुनती हूँ, बचपन से ही विविध भारती सुनने आई हूँ। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि कुछ पल के लिए दुखी होता हूँ फिर सोचता हूँ कि मेरे दुख के होने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या दुनिया बदल जाएगी। भाई इस सोच की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि ज्यादा देर दुखी रहने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मैं इससे बदल सकता हूँ दुखी रहकर, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको एक हौसला मिलेगा कि आपको आगे बढ़ना है और खुद के इस दुख को दूर करना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं दुख से संबंधित बात कहते हुए कि कई दुख मैंने झेले हैं, अब तक जीवन में उन दुखों को मैं सहन भी कर लेता हूं, परंतु जब मैं किसी अपने को या रिश्तेदार को या मिलने वाले को इस संसार से परलोक के लिए बिछड़ते देखता हूं तो ये दुख मेरे लिए असहनीय हो जाता है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता, फिर भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा मानकर दुख सहते हुए अपने आप को शांत करना ही पड़ता है। वहीं हमारे एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट किया है जिन्हें हम हिंदी में सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुख दर्द ये सब जो भी हैं वो अनुभव हैं, एक ऐसे अनुभव हैं जो हमारे खुशी और आनंद के पलों को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं और ज़्यादा मीठा बना देते हैं।

0: हमारे साथी कह रहे हैं कि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। और आगे उन्होंने लिखा, जीवन चक्र में कोई चीज शाश्वत नहीं है। बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। मैं आज राजकोट आया हूँ, पल दो पल समय मिला तो लिख लिया, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खुश इंसान कहीं नहीं रह सकता, अगर वो दिन भर खुश रहने के नए नए तरीके खोज ले तो खुश रह सकता है, जैसा कि विविध भारती पर गीत सुनकर और ऐसी कई चीजों में आप खुश रहने का तरीका खोज सकते हैं। तो भाई देखिए, पहले आपने ही कहा कि खुश रहने के चाहे तो कहीं खुश नहीं रह सकता, फिर आपने ही तरीका बताया कि किस तरह से खुश रह सकते हैं। तो भाई खोजा जाए तो सारी चीजें संभव है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द की आग में जलना ही होता है, जलना ही नहीं होता है, गम से आगे भी कोई रास्ता होता है। आंख छलके तो इस बहान इसे बहने दो, मत रोको, बोझ सीने को का रोने से ही कम होता है। वक्त मरहम है हर एक जख्म का, ये याद रखो, शब जितनी भी हो काली सवेरा होता है। अपने खुद को संभालो, जरा ठहरो, देखो हर अंधेरे के पीछे एक चिराग होता है। भाई क्या बेहतरीन बात आपने लिखी। और वाकई ऐसा होता है कि जब भी वक्त में ऐसा कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत गम है तो वो दूर हो ही जाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि जिंदगी में गम आए हैं, खुशियां भी, मैंने बस इतना सीखा कि दुख को दिल पर बोझ बनाकर नहीं, एक अनुभव बनाकर जीना चाहिए, और जब खुशी मिले तो उसे कल की चिंता में नहीं आज की मुस्कान में जी लेना चाहिए। हर दर्द हमें कुछ सिखाकर जाता है और हर खुशी एक खूबसूरत याद दी जाती है, इसलिए अब गम से शिकायत नहीं और खुशियों से कोई डर नहीं, जो पल मिला है उसे पूरे दिल से जी लेना चाहिए, शायद यही जिंदगी है। गम आए तो थोड़ा रो भी लें, खुशी आए तो खुलकर हंस भी लें, आखिर दोनों ही जिंदगी के रंग हैं। मेरा मानना है कि हर पल को स्वीकार करके मुस्कुराते रहना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। भाई क्या ये खूबसूरत बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाए। वैसे आप में से बहुत से लोगों के लिस्ट में ये गीत शामिल है, बताइएगा किसने लिखा है।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख का रोना रोकर लोगों की हमदर्दी हासिल करना कतई सही नहीं होता। ऐसे लोगों से समाज ऊब जाता है। जो लोग मेहनत से दुखों को जीत लेते हैं उन्हें समाज से मान सम्मान मिलता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कोई दुख कभी नहीं हुआ जिसे मैं कुछ बयां करूं, छोटे मोटे दुख तो आते जाते ही रहते हैं। भाई क्या कहने आपके, ऐसा विचार मन में जब रहता है तो सारे दुखों से हम पार हो जाते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख दर्द से कौन नहीं वाकिफ है, सिक्के के दो पहलू की तरह गम और खुशी भी आते जाते रहते हैं। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है, हंसते हंसते जीना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का संगम है, एक जाता है दूसरा आता है। मैंने कोशिश यही रहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर जिया जाए, सही यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर संतुलन कोई बना लेता है तो उसके बाद दुख और सुख हो, चाहे कोई भी कैसा भी एक माहौल हो, कैसा भी भाव हो, हम संतुलित ढंग से रहते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। वैसे हमने अपने साथियों के जो लिस्ट है उसमें एक गीत देखा था जिसका जिक्र तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम तो देख चुके हैं वो लिस्ट में गीत, और हमारी लिस्ट में भी शुरुआत से वो गीत शामिल था। तो क्यों ना वो गीत आपको सुनवाए, क्योंकि एक जश्न भरा गीत है वो। तो चलिए बताइएगा कि इस गीत में संगीत किसका है।

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत से सजा था। हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें दुख होता है जब वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है और वो कार्यक्रम सुन रही हैं, तो इसका मतलब कि वो इस कार्यक्रम में तो शामिल ही है। तो किसी न किसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल रहते हैं। जिस तरह से शामिल कर रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, और आपको बताना है कि फिल्मी पर्दे पर किस पर फिल्माया जाता है, फिल्माया हुआ दिखाया गया है ये गीत।

तो ये पल भी जाने वाला है। गोलमाल फिल्म के इस गीत में नायक अमोल पालेकर नजर आते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल विविध भारती के जश्न में आप सभी से मुलाकात होगी। फेसबुक पेज पर लाइव बने रहिएगा हमारे साथ। सुरीला सफर कार्यक्रम आज का बस यही समाप्त करते हैं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 48वीं कड़ी।

संविधान समिति के समक्ष नए सिरे से प्रदर्शन के समय मास्टर कृष्ण राव ने वंदे मातरम की अलग अलग प्रकार से धुन रिकॉर्ड की थी। मार्चिंग सॉन्ग, ध्वजारोहण, ध्वज वंदन, ध्वज अवरोहण के समय राष्ट्रगीत के रूप में बजाने के लिए कुछ निश्चित सेकंड की ध्वनि रिकॉर्डिंग पाश्चात्य पद्धति से रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसी के साथ झिंझोटी राग की मूल संगीत रचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया था। संसद में मास्टर कृष्ण राव ने ये ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्ष अपने गायन से वंदे मातरम के प्रदर्शन प्रस्तुत

0: ये प्रदर्शन अत्यंत प्रभावी हुए। अधिकांश संसद सदस्यों को ये संगीत रचना और वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में स्थान स्वीकार्य था, परंतु दुर्भाग्य का आघात एक बार फिर यहाँ वंदे मातरम पर हुआ। प्रदर्शन प्रस्तुत होने के बाद पंडित नेहरू ने मास्टर की प्रशंसा की। वंदे मातरम को हम राष्ट्रगीत के समान स्थान देंगे, ऐसा भी कहा। 24 जनवरी 1950 की संविधान समिति की बैठक में कोई मतदान न होते हुए उस पर की चर्चा को टालकर संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को राष्ट्रगीत का स्थान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा दिए जाने की घोषणा की। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा वक्तव्य दिया।
1: जन गण मन इन शब्दों से बना गीत और संगीत भारत का राष्ट्रगीत है। इस गीत के शब्दों में सरकार को समय पड़ने पर आवश्यक बदलाव करने का अधिकार रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का सम्मान दिया जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही रहेगी। मुझे लगता है इससे सदस्यों को संतोष होगा। इस वक्तव्य के कारण जनगण मन को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगीत और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। मास्टर कृष्ण राव कुछ निराशा के साथ पुणे लौटे, पर उस निराशा में भी इस बात का संतोष था कि वंदे मातरम को नजरअंदाज नहीं किया गया। मास्टर कृष्ण राव का वंदे मातरम का अभियान वहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी विभिन्न सभा समारोहों में वे वंदे मातरम गाते रहे। शास्त्रीय संगीत की महफिल का समापन करते समय भी वे आग्रहपूर्वक वंदे मातरम का गायन करते थे। 1952 में चीन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से गए कलाकारों में मास्टर कृष्णराव, ज्योत्सना भोड़े, हीराबाई बड़ोदेकर जैसे नामी कलाकार थे। पेकिंग यानी आज के बीजिंग में हुए कार्यक्रम के अंत में इन सभी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया था। मास्टर कृष्णराव के बाद उनके शिष्य पंडित राम मराठे भी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम अवश्य गाते थे।

0: मास्टर कृष्णराव की तरह वीडी अंबेकर ने भी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के लिए प्रयास जारी रखे थे। नागपुर के वीडी अंबेकर संगीत विशेषज्ञ तो थे ही, पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। 1927 में गो बैक साइमन के नारे लगाने पर लाठीचार्ज झेला। 42 के आंदोलन में भी उन्होंने भेष बदलकर गुप्त पत्रिकाएं बांटने का काम किया। प्रभात फेरियों में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नची केलकर, साने गुरुजी, भाई परमानंद जैसे कई लोगों के सामने उन्होंने अपनी खंबावती राग में की गई रचना सुनाई थी। केंद्रीय प्रसारण मंत्री काका साहेब गाड़गिल ने अंबेकर को दिल्ली बुलाया और संविधान समिति के सामने प्रस्तुति का अवसर दिया। मुख्य सचेतक सत्यनारायण सिंह, पीसी रे, पट्टा भी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी और संविधान समिति की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर उपस्थित थे। नमूने के तौर पर बनाई गई अलग अलग अवसरों पर बजाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग बजाकर दिखाई गई। उस पर डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी जगह से खड़े होकर बोले,
1: I will be the first man to purchase the record if you sing it in the same tune which you have sung just now. Very impressive.
0: आगे यही मिश्र खंबावती राग की रचना वरिष्ठ गायिका गान तपस्विनी मोगुबाई कुर्डिकर की आवाज में रिकॉर्ड की गई। मोगुबाई की आवाज में ये राष्ट्रगीत की गंभीरता को बनाए रखने वाली सुंदर रचना है।

0: दिलीप कुमार रॉय, वीडी अंभईकर, मास्टर कृष्ण राव के संगीतमय प्रयासों से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान दर्जा मिलने में निश्चित रूप से मदद हुई। वंदे मातरम ने जैसे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इतिहास रचा, वैसा ही इतिहास इस गीत की संगीत यात्रा का भी है।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर।

0: मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 48वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने

0: बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
1: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस के विदेश, व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, UPI के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री

0: की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरू के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरू के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब

0: जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
1: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दे।
0: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाऊ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे कमर जलाल आबादी के बोल। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज बोल शैलेंद्र के। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में माया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, सलील चौधरी का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: छोटी सी ये दुनिया।
1: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे रंगोली फिल्म के इस गीत में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: छोटे नवाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राहुल देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरा जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में हमराही फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।
2: आहा!

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, बड़ी शिद्दत से जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं तो कई बार हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभार हम थोड़े निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी हर कोशिश हमें सबक जरूर देती है कि हमें हारना नहीं है, बल्कि इन कोशिशों को जारी रखना है। कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो आज भी हमारी सखियां अपने दिल की बात हमसे कहना चाहती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए। देखते हैं सबसे पहले किस सखी का कॉल हमारे कार्यक्रम में जुड़ गया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे जुड़ी हैं इस समय फोन कॉल पर।
1: मोहिनी बैगा बात कर रही हूँ।
0: मोहिनी जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं तो प्रदेश शहडोल से लगाई हूँ।
0: शहडोल से
1: जी, बहुत सालों के बाद कॉल लगा है मैम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती से बात हो रही है।
0: जी, बहुत सी सखियां हैं जो इस समय कोशिश करती रहती हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन इतनी सारी सखियां क्योंकि एक साथ में कोशिश कर रही होती हैं तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं।

0: हमें भी इस बात की खुशी है कि आज आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। बताइए, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं हमें?
1: जी नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारा देखने के लिए चीज है।
0: आपके घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं।
0: बताइए, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत और उजाले उनकी यादों की और आज के मेहमान।
0: जी
1: बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं पसंद करती हूँ।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनना है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: तो मोहिनी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, जो है मुस्कान फिल्म से। आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी। बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम निर्मला गिरी है, हम मयूरभंज उड़ीसा बारीपदा से बोल रहे हैं।
0: अपने बारे में कुछ बताइए निर्मला जी, आप क्या करती हैं?
1: हम तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई का मशीन है, सिलाई कर लेते हैं। पति है जो लाइन का कंट्रैक्टरी करते हैं, और
0: जी
1: एक बच्ची है 8 क्लास में, CBSE में पढ़ती है 8 क्लास।
0: जी
1: लेकिन हमारा एक दोस्त है राउरकेला शक्ति नगर में,
0: जी
1: तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हर वक्त उसको याद करते हैं। और रेडियो सुनना वो सहेली ने मुझे सिखाया। तब उसका घर हम जाते थे, माना
0: जी
1: कि हमसे वो सीनियर था, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बहुत दोस्ती थी। वो हमको रेडियो सुनाना सिखाया, और हेलो सहेली सब कुछ सिखाया। उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है।

0: हमारा एक ही सपना था कि वो भी रेडियो सुनती है, उसके पास मेरा याद पहुंचाना था, तो उसको हम बहुत याद करते हैं। लेकिन उसके नाम से गीत सिर्फ तुमका एक मुलाकात जरूरी है सुनो, उसको सुनाना।
1: निर्मला जी, आप बहुत भावुक हो रही हैं अपनी दोस्त को याद करके, और उन्होंने ही आपको रेडियो सुनना सिखाया, आपको बताया सुनने हैं कौन कौन से कार्यक्रम, तो वो भी जरूर आपका कार्यक्रम सुन रही होंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी आवाज वो सुनेंगी तो वो आपको जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी दोस्त, जिसे आप बहुत याद करती हैं, तहे दिल से याद कर रही हैं, वो आपको मिल जाए। और आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं, ये भी आपने समर्पित किया है अपनी उसी दोस्त के नाम।
0: हाँ जी,
1: आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत जो आपने समर्पित किया है अपनी दोस्त को।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते। बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: ग्राम कन्या निखर से कामनी पटेल
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं।
1: जी मैम।
0: अपने बारे में कुछ बताइए।
1: सिलाई मशीन करती हूँ, वो सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है मैम।
0: जी आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: मैम जी, उड़ जा काले कावा।
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, उड़ जा काले कावा।
1: जी
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी है हम जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है
0: जी।
1: ना, चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर हैं वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो तो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी।
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम। हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है।
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने
1: हाँ
0: हमसे,
1: मौका मिल गया, और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन नहीं लग
1: बिल्कुल
0: पाता,
1: बिल्कुल
0: तो आपको
1: जी।
0: इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
1: हाँ जी शुक्रिया जी। मैं
0: और
1: तो बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही,
0: जी,
1: जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
0: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो
1: बिल्कुल
0: का
1: जी,
0: साथ
1: पढ़ते
0: बना हुआ
1: समय
0: है।
1: जी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तब तक मेरे मम्मी जागते थे और

0: ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी
1: और आज कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
0: जी। तो यही और रोज सुरीला सफर चलो सुन नहीं पाते स्कूल के टाइम में, बट
1: जी
0: सखी सहेली घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
1: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ भी अगर सेस हो फिर तो हम सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
1: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
0: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
1: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
0: हो गए 10 साल तो हो ही गए
1: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
0: जी, मुश्किल ही है इंटरेस्टिंग भी है मुश्किल ही है।
1: बिल्कुल। और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
0: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
1: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं
0: जी मम्मी
1: चीज।
0: आपके बहुत फैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं
1: जी
0: की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं
1: जी
0: जी
1: और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य। छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी बिल्कुल
1: तो रूही जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: जी। आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
1: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: दीदी, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से सुलोचना कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: सुलोचना जी,
1: जी दीदी, पहली बार कॉल लगा तो दीदी बहुत खुशी हो रही है। दीदी हमारे यहाँ से बहुत सी सखिया कॉल करती है दीदी। क्या
0: जितनी खुशी
1: दीदी?
0: आपको है उतनी खुशी हमें भी है। तो बताइए सुलोचना जी, आप क्या करती हैं?
1: दीदी घर पे रहते हैं दीदी, घर का काम करते हैं दीदी। मम्मी पापा हैं हमारे, तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं। जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं दीदी। पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा ज्यादा दीदी, 10वीं तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद क्या हुआ दीदी, हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ती थी दीदी, हम सागर में।
0: जी
1: तो दीदी हमारी 1 साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल।
0: तो

0: इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
1: जी दीदी करेंगे, दीदी अगर बनेगा प्रयास तो करेंगे दीदी हम।
0: जी, और आपके क्या क्या शौक है सुलोचना?
1: दीदी जी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी। बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी, एक वो सुनती थी बहुत SMS की बहाने भी थी, इसकी तरह 12 बजे आता था वो।
0: हाँ,
1: तो दीदी वो सुनते थे, वो दीदी सखी सहेली तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
0: अच्छा, तो सुलोचना जी आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगते हैं दीदी, जैसे हेलो सहेली है, सखी सहेलियों में जो आप लोग दो दीदी आती है वो अच्छी अच्छी बातें बताती है, पकवान के बारे में कैसे बना कुछ भी मतलब ये जानकारी देती है आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी। अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी,
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा
0: जी। आपको सुनवाते हैं वीरजारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: बताइए, आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। पूनम जी आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद, और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है, और पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप बात कर रही हैं। बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती है, हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए पूनम।
1: जी मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है विविध
0: जी
1: भारती में, और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम, मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं, और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ। गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम आज गीत सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं। ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के आवाज में सुनना है। और मैम, हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ, और मैं जरूर से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी। और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बड़ी चहक है आपकी आवाज में, आप खुश हैं फोन लग गया तो आपका?
1: हाँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज चंचल जी से मेरी बात हो रही है, मेरी खुशकिस्मती है। और शुक्रिया उस रॉक का भी जिसने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खालिदा। तो आज बहुत सालों से ट्राई कर रही थी इस प्रोग्राम में, तो शुक्रिया रॉक का भी।
0: तो खालिदा जी, आपका ये पहली बार कॉल लगा है आज?
1: जी, पहली बार इस प्रोग्राम में कॉल लगा है।
0: और कश्मीर जहाँ से आपने कॉल किया है, ये वो शहर है जिसे जन्नत भी कहते हैं?
1: हाँ, जन्नत भी कहते हैं और जन्नत है भी, क्योंकि जो भी कश्मीर आता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो जब भी कश्मीर को ही पहुंचता है, यहाँ से जाने का फिर दिल और मन भी नहीं करता है।
0: और ये वो जगह है जहाँ हर समय पर्यटक आते जाते रहते हैं, तो बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर।
1: हाँ, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, और साथ साथ अगर सखी सहेली का संग हो और विविध भारती का संग हो तो फिर तो क्या ही बात है।
0: क्या बात है खालिदा जी, हमें भी ऐसे श्रोताओं का साथ बहुत अच्छा लगता है जो बड़ी शिद्दत से सभी प्रोग्रामों को सुनते भी हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप बताइए, आपके पसंद के कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
1: विविध भारती पे जो आता है, आपकी फरमाइश आता है, या जयमाला आता है, सितारा आता है, या सुबह फोन इन प्रोग्राम कुछ भी आए ना इसमें, तो हम सब सुनते हैं। और जो भी ईमेल जैसे कभी कभी इसके प्रोग्राम आता है तो वो भी सब सुन

0: है, जयमाला सुनती हूँ, रोज में सुनती हूँ, और जो सखी सहेली है भी इसका भी इंतजार करती हूँ, और पिटारा में जो आपकी फरमाइश आता है वो भी सुनती हूँ।
1: अच्छा, ये तो हुई रेडियो सुनने की बात है, रेडियो सुनने के अलावा आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या है?
0: जी मैं टेलरिंग के साथ करती हूँ, और यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा कढ़ाई होती है, जो पश्मीने के शाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो यहाँ पे वही ज्यादा काम होता है।
1: और वो कढ़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उसके चाहे शॉल हो, चाहे हम सलवार सूट पहने, दुपट्टे पहने, सभी चीजें बहुत नायाब लगती हैं, तो वो कढ़ाई का काम करती हैं आप?
0: बहुत हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ और टेलरिंग के साथ भी थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कढ़ाई भी होती है, तो यहाँ की जो लड़कियाँ है अगर पढ़े भी लेकिन कढ़ाई साथ साथ उनका शौक भी होता है और कमाई के लिए वो भी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, और इसीलिए इस काम की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाजारों में भी उसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमें सुना है मेरी जंग, इस मूवी का वो सॉन्ग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: अभिलाषा यादव है मेरा नाम।
0: अभिलाषा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जयपुर से बात कर रही हूँ आपसे।
0: अपने शहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: तो मेरा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान
0: जी
1: से है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में।
0: नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, तो
1: जी,
0: किस तरह का काम रहता है? अपने काम के बारे में बताइए हमें।
1: ऑल
0: तो
1: टाइम हमें 24 आवर्स की सर्विसेज होती हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जाना भी पड़ता है। पर अभी मैं 24x7 में केवल एक टाइम की ही ड्यूटी करती हूँ क्योंकि मेरी डिस्पेंसरी ड्यूटीज हैं अभी फिलहाल।
0: तो इसमें आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही समय आपका नियत समय है, उसमें ही आप
1: हाँ जी,
0: काम कर रही हैं।
1: बिल्कुल
0: फिर आप रेडियो सुनने के लिए भी समय निकाल पाती हैं।
1: बिल्कुल, मैं दोपहर में शाम को मेरा मन होता है उस अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ कि भाई कब मुझे क्या सुनना है, तो मैं सेट कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना टाइम।
0: और नर्सिंग फील्ड से आप कब से जुड़ी हैं?
1: करीब 2007 से। हाँ
0: यानी कि करीब करीब 20 साल होने आए हैं आपको इस काम में,
1: जी, हाँ
0: तो अच्छा खासा अनुभव है आपका, और जॉब ने आपको बहुत कुछ सीख भी दी होगी।
1: बिल्कुल, हमारा वर्क ही ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार अलग तरीके का पेशेंट होता है, हर बार अलग तरह से केयर करनी होती है, तो
0: जी
1: बहुत सी चीजें, नई चीजें भी सिखा के जाती है हमें। और हमारा जो प्रोफेशन है वो लर्निंग प्रोफेशन ही है।
0: जी ये सेवा भाव का काम है, और अगर आप सेवा भाव से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जिन परिवारों के मरीजों की आप देखभाल करते हैं, वहां से आपको दुआएं भी बहुत
1: वो
0: मिलती
1: हमें बहुत,
0: होंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बहुत दुआएं देके जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे समझते हैं जैसे डॉक्टर उनके लिए भगवान है। उसकी तरह से हम जब उन्हें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको यही फीलिंग आती है, वो खूब हमें ब्लेसिंग्स देके जाते
0: तो
1: हैं।
0: बड़ा अच्छा काम है आपका। और बताइए अभिलाषा जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आप हमें ताल मूवी से गाना है, इश्क बिना क्या जीना यारो, ये सुनवाएं प्लीज।
0: तो ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो सहेली
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते। बताइए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी हैं?
1: जी मैम रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गांव कंठी से।
0: तो आपके बहुत खूबसूरत शहर से आपने फोन किया है। अपने शहर के बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: पहाड़ी एरिया यहाँ पर तो मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए क्योंकि अच्छा इलाका यहाँ का और यहाँ पर मतलब कि गर्मी कम लगती है।
0: गर्मी का तो एहसास होता ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। और
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: जो
1: मैम।
0: मौसम आने वाला है वो तो बर्फबारी का और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है।
1: जी बिल्कुल मैम। अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी है। सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है इधर।
0: तो रिंकू जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैम मैं घर का ही काम करती हूँ।
0: घर के कामों में भी आपकी पसंद का काम कौन सा होता है?
1: जी मैम मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब कैसे घर में मैं किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है।
0: तो
1: जी
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम गाना मैंने दोस्ती फिल्म का सुनना है। राई मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है। और ये सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मतलब सभी अपनी सहेलियों को बहुत शुभकामना और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
0: तो आपकी जो सभी सहेलियां हैं उनको भी हम ये गाना सुनवाते हैं और हमारे सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं आशा चौहान बोल रही हूँ, गुजरात राजकोट से।
0: गुजरात राजकोट से। तो आस्था जी, अब जो मौसम आने वाला है वो गरबे का मौसम है। आज से बस 9-10 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा और गुजरात में तो बहुत धूम रहती है, तो
1: बिल्कुल
0: आपको गरबा करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, मुझे देखना अच्छा लगता है।
0: तो
1: मैं हमेशा से डांस पर्सन नहीं रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ।
0: जी
1: मैं साहित्य पसंद किया है मैंने हमेशा, और मैंने कविताएं भी लिखती हूँ, और मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, कल्चरल प्रोग्राम। और मैं भारत के हर कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे भारत के अंदर ही घूमना पसंद है, सारे स्टेट्स के कल्चरल एक्टिविटीज देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के नज़ारे देखना, और बस साहित्य से जुड़ी हूँ इसलिए कुदरत को देखना अच्छा लगता है ज्यादा।
0: और ये जो देश प्रेम का भाव है आपके अंदर, ये बहुत सुंदर है। तो आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप लिखती भी हैं। अपनी लिखी कोई कुछ पंक्तियां आपको अगर याद हैं, कोई कविता याद है तो हमारे साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ जरूर, मैंने दो कविताएं चुनकर रखी है, जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने,
0: जी।
1: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो, क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर आ रहे हैं,
0: जी
1: ग्लोबल वार्मिंग और सब, तो उसके ऊपर कविता लिखिए, शहर को गांव बना दो, पेड़ों की बौछार लगा दो, पानी की फुहार बहा दो, शहर को गांव बना दो, खेती की हरियाली बिछा दो, चिड़िया का अंबार लगा दो, मौसम का हाल बता दो, बाइक नहीं साइकिल चला दो, शहर को गांव बना दो। मैं इसके बाद ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ, 55 इयर्स की उम्र है मेरी,
0: और साइकिल
1: और मैं
0: चलाने
1: दूसरी
0: से
1: कविता।
0: एक फायदा तो ये है कि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है और
1: हाँ
0: आपकी
1: बिल्कुल,
0: सेहत है वो भी बरकरार
1: हाँ
0: रहती है। और जैसा अभी आपने कविता सुनाई कि शहरों को गांव बना दो, तो वाकई अगर ऐसा हो सके तो जो खुशहाली है वो फिर से लौट आएगी और जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक कम हो सकेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन 80% लोग जो नहीं सोच पाते या सोचते नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कमी है और शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उनको भी सोचने की जरूरत है, तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं होगा, हम अगर
0: बिल्कुल।
1: सब समझ जाएंगे।
0: और आप जैसे जागरूक लोग जब तक हैं तो एक ही इंसान आगे और 4 लोगों को जागरूक कर सकता है। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। हम चाहेंगे कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो बताइए आपकी
1: जरूर,
0: पसंद क्या है?
1: मेरी पसंद का जीवन मृत्यु पिक्चर का कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा, झिलमिल सितारों वाला सुना दीजिएगा। मेरी दूसरी कविता जो मैंने निकाल रखी थी उसकी भी 4 पंक्तियां सुना देना चाहती हूँ आपको।
0: जरूर सुनाइए।
1: जरा के हम सफर, उस कविता का नाम है, रखा है मैंने, समंदर को के मोती चुरा कर

0: सीप बना दो। इंसान कुछ भी कर सकता है, सीप में से मोती निकलती है, लेकिन मोती में से भी सीप बना सकते हैं इंसान। ज्वेलर है वो बना सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करे कुदरत के लिए और इंसानियत के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी, नेगेटिव ना करे। समंदर के मोती चुरा कर सीप बना दूं, कर्म क्षेत्र की राही हूँ मैं दीप बना दूं, उद्वेग मन के मीत बना दूं, हार नहीं जीत बना दूं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं।

0: उद्वेग मन के मीत बना दूं, हार नहीं जीत बना दूं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं, आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, तो बस अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहिए और इसी तरह से रेडियो के माध्यम से इन्हें साझा करती रहिए। और आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु, इस फिल्म का गीत जो आपने सुनना चाहा है।

0: सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, एक अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का ICD कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288, मुंबई का ICD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और हर बार जब ये कार्यक्रम होता है तो कुछ नई सखियां हमारे साथ जुड़ती हैं और कुछ ऐसी सखियां जो हर थोड़े अंतराल पर हमें कॉल करती रहती हैं। तो जिन सखियों का कॉल आज भी नहीं लगा वे निराश ना हो, हो सकता है अगली बार आपका कॉल लग जाए, इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा। जिन सखियों ने हमसे बात की हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें ताकि नई सखियों को भी कॉल करने का मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन जब हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है उस समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर-मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी। उफ, कितना खौफनाक विषय। एक बार तो उसने ना ही कर दिया था, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया, जबकि राइमा ने महिलाओं की सुरक्षा विषय पर बाइट बनाई थी। इरफान ने स्वच्छता अभियान को चुना। पूरी क्लास भर में साइबर क्राइम जैसे विषय पर दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना। उफ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणो सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

0: बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।
1: बीते हुए दिन कुछ

0: वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी।
1: 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो।
0: कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली,
1: भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी।
0: दिव्या तमक कर उठ बैठी।
1: तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग?
2: सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी, हैं?
1: मम्मी बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक।
2: अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी।
1: क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से?
0: सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ?
1: मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है।
2: अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा।
1: आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना।
2: अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे। जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना, तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना, तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ
1: अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो।
0: दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार उसूल ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है।

के लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही। कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है, और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मटक देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है।

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या,
0: क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो?
1: अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स्ड, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
0: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।
1: खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
0: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सबके लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सबके लिए।
1: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है?
0: हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले

साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था। इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं, उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हां, पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोन्टाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं? मां, वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हां, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? अब बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि

हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में

खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: ये फिजाए दुला रही है तुम्हें।
1: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। जब तुम्हें मैंने पहली दफा देखा था, मुस्कान ने तुम्हारी मेरे दिल को जीता था। जाने तुम्हारी काली आंखों का जादू था या गोरे गालों की हंसी, जाने अनजाने ही सही मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंसी।
1: दरअसल लोकियों शर्माना, झुक जाना कभी।

अभी तो मेरी आँख में आंसू पूरी तरह आए भी नहीं थे और तुमने उन्हें समझ लिया। तुम्हारी इस अदायगी ने मेरे पूरे दिल को जीत लिया। सोचती हूँ इतनी समझदारी तुम में कैसे आई होगी। शायद तुमने भी कभी किसी से गहरी

समंदर के किनारे अकेले बैठा करते थे। न जाने तुम किसका इंतजार किया करते थे। नसीब में जब हीरा लिखा हो तो सोने के खोने का गम मत करना, और जब हीरा मिल जाए तो सोने से तुलना करके हीरे का मोल कम ना करना।

अंतराल के बाद एक बार फिर छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को तन्हा पाती हूँ। हर शाम तुमसे मिलने की चाहत में दर पर अखियां बिछाती हूँ। तुम्हें आता देख खुशी से बावरी हो जाती हूँ, और जब तुम जाते हो तो बिछड़ने के ख्यालों से बेचैन हो जाती हूँ।

0: जाएंगे।
1: भरे बाजार में जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो अच्छा लगता है, जब किसी छोटे बच्चे की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो अच्छा लगता है, मेरी किसी नादानी पर जब तुम प्यार से डांटते हो अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ जीवन का हर ख्वाब बिल्कुल सच्चा लगता है।

खुशी का जरिया हो तुम, मेरे सुकून का दरिया हो तुम, दुआओं में जिसे मांगा था वो हकीकत हो तुम, अब हर जन्म में मेरे मेरे और सिर्फ मेरे हो तुम।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

कार्यक्रम में अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6,000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने ने पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुनिए ये संदेश।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग दो। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, पद्मश्री, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। जयमाला का समय रहेगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष में अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 13वां भाग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए रूपक महान आत्मा, लेखन और निर्देशन गुरमीत रामल मीत। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, प्रस्तुति रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर पूजा नारायणिया का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात्रि 11 बजे सुनिए रंग तरंग। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 330। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 3। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, पद्मश्री, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा सुबह 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार जेपी दत्ता पर, आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी, कल आप सुनेंगे लेखिका ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का 1वां भाग, स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे सुनिए मैटनी शो, इसमें सुनिए जानी मानी गायिका इलारून से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का सजीव प्रसारण। 12:05 पर सुनेंगे विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जानी माने संगीतकार अनु मलिक से यूनुस खान की बातचीत का सजीव प्रसारण। दोपहर 2:30 पर सुनिए विविध भारती की सालगिरह का जश्न, इस मौके पर ममता जानी मानी फिल्मकार और अभिनेता दिग्मांशु धोलिया से ममता सिंह की बातचीत का सीधा प्रसारण। दोपहर 4 बजे पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज, इस पर सुनिए गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से ममता माफ कीजिएगा मंदाकिनी जोशी की बातचीत का 3रा भाग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। संध्या रंजन का समय रहेगा शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला, जिसे प्रस्तुत करेंगे संगीतकार एस जी बर्मन। 7:45 पर सुनिए जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे सुनिए हवा महल, कल हवा महल में सुनिए सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन भाग 1, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार जेपी दत्ता पर, आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले। छाया गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे।

बजे आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, और ढलती जा रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। यह थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने सुना उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में जय संतोषी माँ फिल्म का गाना। गीत प्रदीप का था, संगीत सी अर्जुन का। आइए अब सुनते हैं जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में गीत गाता चल फिल्म का गाना। गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, और हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है गायक संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन को। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: शेखर दादा, आज की इस दूसरी कड़ी में हम अपने श्रोताओं को क्या सुनवाने वाले हैं?
2: चूंकि हम लोगों का विषय एक पूरी शताब्दी को लेकर है
1: जी,
2: तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भक्ति के बहुत अलग अलग रंग आए
1: जी,
2: हैं।
1: जी।
2: और शुरुआत से ही हमारे यहाँ सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति
1: जी,
2: और उसमें फिर सूफी रंग भी आया। लेकिन 1920 के बाद से 1925 के कालखंड में
1: जी,
2: एक और भक्ति का नया स्वरूप हमारे समक्ष आया, और वो था देशभक्ति का रूप।
1: देशभक्ति रूप
2: कि अचानक पूरा देश जो था वो स्वतंत्रता पाने के लिए एकदम आलोड़ित हो रहा था, कि उनको लग रहा था कि बस किसी तरह हमें ये आजादी मिल जाए। तो देश के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब तो थे ही, और उस समय एक नारा अपने आप देश प्रेम का नारा बन गया था, और वो था वंदे मातरम। कहीं भी कुछ भी होता था तो वंदे मातरम की का जयकार लगाकर लोग आगे बढ़ते थे।
1: यहाँ तक कि लोग नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहने लगे थे।
2: और उस समय ये बहुत कम लोगों को पता है, हम सब जो ये गीत गाते हैं ये मूलतः संस्कृत का गीत है
1: जी, जी, जी।
2: जो बंकिम बाबू ने लिखा था अपने उपन्यास आनंद मठ में
1: जी,
2: और उसकी बहुत सारे लोगों ने धुन बनाई है, पर जिस स्वरूप में वो हमें राष्ट्रगीत के रूप में हम सब भारतवासी उसे गाते हैं, उसकी रचना गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की थी
1: जी।
2: और उन्होंने, ये भी संयोग की बात है कि देशभक्ति का ये गीत राग देश में उन्होंने बांधा था, तो मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं को मैं थोड़ा सा राग देश का एक थोड़ी सी झलकी

0: क्या बात है।
1: राग देश का रूप है। हमारे यहाँ रागों के नाम भी बड़े अद्भुत रखे गए।
0: जी जी,
1: देश भी एक राग है, एक हाँ। राग है देसी, बिल्कुल अलग उसका रूप है। फिर हमारे यहाँ शहरों के नाम पर भी, क्योंकि मैं राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों के नाम और गांवों के नाम पर भी राग बने हुए हैं। मुल्तानी बना हुआ है, वृंदावनी सारंग है, भोपाली है, जौनपुरी है। तो हमारे यहाँ ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर कोई तेलंगाना का विद्वान था तो उसने अपने एक राग बनाया, उसका नाम तिलंग रखा। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सारे स्वरूप आए। और जब आनंद मठ का ये गीत लोगों के समक्ष आया तो हर एक कार्यक्रम में ये गीत गाया जाने लगा और हमारे उस पूरे स्वातंत्र्य आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की धुन, ये श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी एक धुन बनाई थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, एक धुन बनाई थी जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने
0: जी,
1: और एक और धुन बनाई थी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की ये धुन सुनिए, क्योंकि इतनी सुंदर ये धुन है कि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक काल

0: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए आप अपने श्रोताओं को अब क्या सुनाएंगे।
1: मैं चाहता हूं कि मैं यही गीत आपको दूसरे स्वरों में सुनाऊं, क्योंकि विशेषता हमारे भारतीय संगीत की यह है, बहुत सारी रचनाओं के आपको बहुत सारे रूप मिल जाएंगे।
0: जी जी,
1: तो वंदे मातरम के भी बहुत सारे रूप हैं। तो उनका एक और आदरणीय हेमंत कुमार जी द्वारा फिल्म आनंद मठ के लिए ये रचना रिकॉर्ड हुई थी और लता मंगेशकर जी की आवाज में है, और वो रचना भी जब आप सुनते हैं तो आपके एकदम रोम रोम
0: खड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं यही रचना।

0: आनंद मठ फिल्म की ये रचना अभी आप सुन रहे थे।
1: ये हेमंत दा ने जब रचना की थी तो ये राग भैरवी में इसकी रचना की है, पर आम तौर पर जो भैरवी का रंग होता है
0: जी,
1: वो रंग उन्होंने नहीं रखा
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ भैरवी में ज्यादातर ठुमरियां होती हैं या भजन होते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वंदे मातरम की रचना की, मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनुपम है। मैं चाहूंगा श्रोता इसको बहुत गौर से दो बार, चार बार, दस बार सुने, क्योंकि इस तरह

0: वंदे मातरम, तो एक समूह गान का भाव भी आए, देशभक्ति का भी भाव आए, और फिल्म की जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से एक कॉम्पोजिशन बने। तो हेमंत दा को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक अद्वितीय रचना बनाई है। ऐसी रचना हेमंत दा के रेपर्टायर में मुझे दूसरी दिखाई नहीं देती जिसको मैं इस रचना के साथ में रख सकूं कि हेमंत दा ने इस तरह की एक और रचना बनाई। वंदे मातरम जैसी धुन हेमंत दा ने केवल ऐसी ही बनाई और यहीं पर उसका प्रयोग किया है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर दादा इस जानकारी के लिए। और अब आज की इस कड़ी को यहीं पर समेट लेते हैं और कल तीसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे संगीत सरिता में। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सिंह से बातचीत कर रही थी ममता सिंह। आज आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। कल हाजिर होंगे तीसरी कड़ी के साथ। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

लीजिए सुनिए फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। सभी फौजी साथियों को प्रीति शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह देशभक्ति गीत के साथ। आज हमने इसे लिया है फिल्म आक्रमण से। गीत किशोर कुमार ने गाया है, इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों,

आइए अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजों में चक दे इंडिया फिल्म का गाना। इसे लिखा है जयदीप साहनी ने, संगीत सलीम सुलेमान का है।

तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक। किसका

0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
1: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
2: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
3: अगला गाना फिल्म गुप्त से है। इसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत विजू शाह का।

भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला अरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

फौजी साथियों, अगला गाना हमने लिया है फिल्म 1942 आ लव स्टोरी से। इसे गाया है कुमार सानू ने, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत आर डी बर्मन का।

आइए सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में आदमी खिलौना है फिल्म का गाना। इसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: जयमाला का शेष भाग अंतराल के उस पार।

0: फौजी साथियों, कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गाना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर, गीत राहत इंदौरी का है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गाना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में है। फिल्म का नाम है गर्देश, गीत जावेद अख्तर ने लिखा है, संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं आशिकी फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, गीत समीर का है संगीत नदीम श्रवण का।

0: अनमोल यादें। नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें कार्यक्रम के इस आखिरी एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते सारे श्रोताओं को, मेरा नमस्कार फिर से। और फिर से आज मैं

0: आपको 60s में लेके जा रहा हूं, जो मेरे पर्सनल राय में
1: अच्छा
0: हिंदी फिल्म संगीत का सबसे सुनहरा
1: दौर
0: दशक
1: था
0: है।
1: वो। जी।
0: इसकी शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे फिल्म गीत से
1: हाँ
0: जिसे एक बड़ा ही अलग तरह का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: सुर सिंगार संसद एक ऐसी संस्था थी
1: जी
0: जो हर साल सिने जगत के सबसे अच्छे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग को
1: हाँ
0: अवार्ड देती थी,
1: अच्छा
0: और 1968 का अवार्ड इस गाने को मिला जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं।
1: आप वापस फिल्म की बात कर रहे
0: जी
1: हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: रफी साहब ने गाया हुआ कमाल का ये गाना, मजरू साहब का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके कंपोजर थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसके बाद में नाचे मयूरी 1986 और राम लखन 1989 में फिर से ये अवार्ड मिला था,
1: अच्छा
0: पग पादम और बड़ा दुख दीना के लिए।
1: जी
0: तो ये गाना उनका पहला अवार्ड था। हालांकि इस फिल्म के दो और गाने,
1: जी
0: एक तेरा साथ और आई बहारों की शाम, उस जमाने में बड़े लोकप्रिय हुए थे और आज भी हैं।
1: और उस लोकप्रियता के दौर में ये गाना कहीं पीछे रह गया था। चलिए सुनते हैं वापस फिल्म का ये नायाब गीत।

उस जमाने में बेस्ट क्लासिकल बेस्ड गाने का गीत का अवार्ड जीतने वाला ये वापस फिल्म का गाना आपने हमें सुनवाया। और राजीव जी,

0: अब किस गीत की बारी है?
1: अब देखिए, मैं 70s के एंट्री में लेके जा रहा हूँ आपको।
0: हाँ हाँ।
1: और हेरे कन्हैया ये गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, फिल्म थी छोटी बहू।
0: हाँ।
1: छोटी बहू में एक ऐसा गाना था
0: हाँ।
1: जो कैफी आजमी साहब और कल्याण जी आनंद जी का सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ गाना था। उसके बाद में उन्होंने दो और गाने किए, एक नसीहत में था, एक आखिरी मुजरा करके फिल्म थी।
0: जी जी।
1: लेकिन ये गाना रफी साहब ने गाया हुआ,
0: हाँ,
1: बड़ा ही रोमांटिक गाना है। और कल्याण जी आनंद जी ने भी बहुत ही कम ऐसे गाने बनाए रफी साहब के साथ जो इतने रोमांटिक है।
0: अच्छा,
1: कैफी साहब तो खैर रोमांस के बादशाह थे। अगर आप उनकी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड, आप
0: बिल्कुल,
1: उनका पूरा
0: हाँ,
1: करियर देखें, तो उन्होंने कमाल गाने लिखे हैं रोमांस के डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो खुद एक बड़े ही रोमांटिक इंसान थे।
0: जी जी,
1: इंसान ही रोमांटिक थे तो शायरी तो रोमांटिक होगी,
0: होनी ही है।
1: तो ये गाना सुनते हैं, ये रात है प्यासी प्यासी,
0: छोटी बहू फिल्म से।

0: छोटी बहू फिल्म से ये एक रोमांटिक सॉन्ग हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और राजीव जी, आज के इस आखिरी एपिसोड का और हमारी सीरीज का अनमोल यादें इस श्रृंखला का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: मैं कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगा।
0: अच्छा,
1: प्रिंस, हाँ, सूरज, हाँ, दुनिया, हाँ, प्यार ही प्यार, संगम, आम्रपली, न्यू दिल्ली, हाँ, जिंदगी, ये सारी फिल्मों में जो कॉमन पॉइंट थे
0: जी,
1: वो शंकर जयकिशन का म्यूजिक,
0: हाँ,
1: और वैजयंती माला की अदाकारी।
0: ओहो,
1: एच डी बर्मन के

0: अलावा शंकर जयकिशन के साथ वैजयंती माला ने सबसे ज्यादा काम किया और सबसे कमाल काम किया,
1: जी
0: लेकिन उनके गाने भी बहुत चले। संगम, आम्रपली, अगर आप
1: बिल्कुल
0: देखो,
1: बिल्कुल
0: सूरज, काफी गाने उनके हिट हुए। उनमें से काफी गाने लता जी ने भी गाए थे,
1: हाँ,
0: लेकिन लता जी का गाया हुआ ये गाना जो फिल्म में
1: हाँ
0: रेडियो पर सुनाई देते हैं, मतलब वो रेडियो स्टेशन पे माइक पे गा रही हैं, जिस
1: अच्छा
0: तरह हम आज माइक पे बोल रहे हैं,
1: हाँ
0: ये गाना मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना, जिसमें उत्तम कुमार हीरो भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, उनकी एंट्री हुई हिंदी फिल्मों में, उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी फिल्में भी की,
1: जी,
0: लेकिन ये गाना, जीवन के दो राहों पे खड़े सोचते हैं हम, इस तरह हम भी ये सोच रहे हैं कि ये अनमोल यादें का कार्यक्रम
1: जी
0: अभी समाप्त होने जा रहा है, तो रेडियो पे बात करते करते हम रेडियो पर ही गाया हुआ गाना वैजयंती माला का सुनते हैं।
1: आइए सुनते हैं छोटी सी मुलाकात फिल्म से ये।

0: सर हम भी ये सोच रहे हैं कि ये अनमोल यादें का कार्यक्रम
1: जी
0: अभी समाप्त होने जा रहा है। तो रेडियो पे बात करते करते हम रेडियो पर ही गाया हुआ गाना वैजयंती माला का सुनते
1: हैं। आइए सुनते हैं छोटी सी मुलाकात फिल्म से ये गीत।

0: क्या बात है राजीव जी, देखते ही देखते 13 एपिसोड्स पूरे हो गए हमारे अनमोल यादें कार्यक्रम के, और बहुत ही नायाब और बहुत ही रेयर सॉन्ग्स इन 13 एपिसोड्स में आपने हमें सुनवाए, उन गीतों को याद किया, उन गीतों के बारे में अपने कुछ निराली सी बातें भी अपने श्रोताओं को सुनवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू जयंत जी, बड़ा ही मजा आया इस श्रृंखला को पेश करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए। आपके साथ हमारा समय बहुत ही अच्छा गुजरा और मैं आशा करता हूं कि कभी न कभी मुझे मौका मिलेगा ऐसे गाने फिर से लोगों के सामने पेश करने का।
0: जरूर। और श्रोताओं, आप अपनी राय इस कार्यक्रम के बारे में, इस पूरी श्रृंखला के बारे में हमारे फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार। शुभ रात्रि।
2: अनमोल यादें।
0: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: अनमोल यादें।

0: गांधी जी का स्मरण होते ही मानव के उच्चतम आदर्शों का ध्यान आ जाता है। मानव का आचरण और विचार जैसे सत्य, त्याग, विग्रह की भावना, विश्व बंधुत्व, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, समानता की भावना, स्वच्छंदता और विश्व कुटुंबकम आदि, ये सब विशेषताएं उनके व्यक्तित्व का अटूट अंग थीं। वे इन्हीं आदर्शों के लिए जिए और इन्हीं के लिए उन्होंने अपना जीवन तक होम कर दिया। इस ढंग से जीकर और इसी मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उत्सर्ग करके उन्होंने मानवीय गुणों का एक ऐसा भवन निर्मित किया जिसकी भव्यता देखकर व्यक्ति अपने को मानव कहलाने में गर्व अनुभव कर सकता है। देशवासी उन्हें सामान्य मानव से अधिक मानते थे, समझते थे, जबकि सारा विश्व उनकी आत्मिक शक्ति की प्रशंसा करता था, उन्हें इसी शक्ति के लिए सम्मान की दृष्टि से देखता था। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तो उन्हीं को समर्पित ही है। आने वाली अनेक शताब्दियों तक उनके आदर्श मानव जाति के पथ को आलोकित करते रहेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा था,
1: देखने में दुबला पतला आदमी फिर भी दूसरों से कितना कदावर, यदि उनकी आत्मा की महानता के आधार पर उनका आकलन करती हैं, तो हम पाएंगे कि दूसरे लोग अपनी प्रसिद्धि अपने ढंग व गुणों के आधार पर, अपने काल या स्थान के आधार पर, चाहे महात्मा जी से कितने बड़े प्रतीत होते हों, किंतु उनकी महान आत्मा के समक्ष वे तुच्छ हो जाते हैं। कारण है उनकी आत्मिक गहराई। वे घृणा और दुर्भावना से परे थे, उनमें अथाह आत्मसंयम था। मानवता के नाते सबको प्रेम देने में वे कभी संकोच नहीं करते थे। वे विश्वास करते थे कि शरीर का मरना आत्मा को अपवित्र बनाने से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अपने इस विश्वास का परीक्षण उन्होंने अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करके भी किया था। मानव जीवन में धर्म की क्या भूमिका है? मानवीय शाश्वत मूल्यों का संसार की रोज परिवर्तनशील समस्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस तथ्य से वे पूरी तरह से विदित थे। उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत धर्म ही था, किंतु महात्मा गांधी का धर्म केवल रीति रिवाजों और बाह्य आडंबर पूर्ण प्रदर्शन से बना धर्म नहीं था। उनका धर्म था सत्य, ऐसा सत्य जो केवल सत्य के मूल्यों, प्रेम, न्याय और हर पल उस सत्य की अनुभूति में तल्लीन रहने की भावना, जो संपूर्ण मानव जाति को उत्कर्ष की शिखा की ओर अग्रसर करता है।
0: एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने गांधी जी से धर्म के बारे में उनके विचार जानने चाहे तो बापू ने कहा,
1: मैं अपने धर्म की व्याख्या प्रायः सत्य का धर्म के रूप में करता हूं। ईश्वर ही सत्य है, कहने की अपेक्षा मैं कहता हूं सत्य ही ईश्वर है। ऐसा कहकर मैं अपने धर्म को सही रूप में परिभाषित कर पाता हूं। सत्य के अतिरिक्त मैं अपने ईश्वर को दूसरे अन्य ढंग से परिभाषित नहीं कर सकता।
0: इसका एक सुंदर उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी सत्य के ही ईश्वर होने की व्याख्या इस तरह करते हैं,
1: हमने लोगों को ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए देखा है, किंतु सत्य को झुठलाते हुए हमने लोगों को नहीं देखा है। कोई सत्य को झुठलाने का प्रयास करता भी है तो स्वयं झूठा सिद्ध हो जाता है। सत्य अडिग, अजर, अमर और शाश्वत रहता है। मानव जाति में अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति में भी सत्य का कुछ अंश होता है। हम सब में सत्य की चिंगारी विद्यमान है। सत्य के इन चिंगारियों के योग का वर्णन कर पाना असंभव है। हां, अभी तक न जाना गया सत्य ही ईश्वर है। नित्य प्रति की प्रार्थना से मैं इस सत्य रूपी ईश्वर के निकट पहुंच गया हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि सत्य की खोज का मार्ग मुझे मिल गया है।
0: सब महापुरुषों और ज्ञानियों ने यही कहा है कि अपने को जान लेना ही ईश्वर को जान लेना है। स्वयं की खोज ही ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करती है। गांधी जी जीवन पर्यंत अपने को जानने में लगे रहे, तभी तो वे कहते हैं,
1: पूर्ण सत्य को जानना ही अपने आप को पहचानना है। अपने

0: लक्ष्य को जानना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वयं को जानना ही सर्वज्ञाता बनना है। अपने कमियों के बारे में मैं पूर्णतः अवगत हूं, इसी एहसास में मेरी शक्ति है जो मुझमें समाई हुई है। किसी तरह का महान व्यक्ति होने का मैं दावा नहीं करता हूं। जिस कमजोर और क्षीण मिट्टी के सब लोग बने हुए हैं, मैं भी उसी मिट्टी का बना हुआ हूं। इसलिए किसी भी समय मैं कोई भी गलती कर सकता हूं।
1: गांधी जी मानते थे कि सब धर्म व्यक्ति के लिए एक जैसे अनुशासन का निर्धारण करते हैं, जिससे उसे अपना लक्ष्य मिल सके। वेद, त्रिपिटक, बाइबल और कुरान आत्मिक आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता पर बल देते हैं।
0: सत्य ईश्वर से जुड़ा हुआ है और विचार मानव से जुड़े हुए हैं। ये कहना कठिन है कि हमारे विचारों ने संपूर्ण सत्य की पहचान कर ली है। हमारी धार्मिक विचारधाराएं चाहे जो भी हों, हम सब पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं और हम सब की दृष्टि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है। हम चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, जिसे चाहे अपना पथ प्रदर्शक चुने, किंतु जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि हम किस रास्ते से आए थे। महत्व तो इस बात का है कि हमने अपना सफर जारी रखा। धर्म में महत्व इस बात का है कि हम सत्य के मार्ग पर चलने में सदैव प्रयत्नशील रहें।
1: संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि हम सब धर्मों का आदर करें, सहनशीलता को अपनाएं और ऐसा कुछ न करें जो दूसरों के विश्वास को, धर्म को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाए। क्योंकि सहनशीलता की कमी तो हमारी सूझबूझ की कमी का ही परिचायक सिद्ध होगी। जनवरी 1928 में महात्मा गांधी ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेलोशिप को संबोधित करते हुए कहा था,
0: सब धर्म सत्य हैं। यदि किसी धर्म में कोई एक कमी है तो दूसरे धर्म में कोई दूसरी कमी होगी। यानी यदि है तो कोई न कोई सभी धर्मों में कमी हो सकती है। इसलिए मुझे सभी धर्म प्यारे हैं। अपने धर्म में अटूट विश्वास रखते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, जो कुछ तुमने मुझे दिया है दूसरों को भी देना। उनको पूर्ण प्रकाश और सत्य दो ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। मेरा विश्वास मुझे वो सब सिखाता है जिससे मेरा आत्मिक विकास हो।
1: सत्य, अहिंसा और शांति के महात्मा गांधी प्रतीक माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के केंद्र बिंदु अहिंसा की भावना को गांधी जी ने एक बार फिर विश्व के पर्दे बता दिया। युद्धग्रस्त विश्व को, अशांत मानव मन को, घृणा से ग्रस्त मानव समाज को गांधी जी ने अहिंसा के अर्थ को समझाने का पूरा प्रयास किया ताकि मानव समाज शांतिपूर्ण ढंग से जीना सीख सके। गांधी जी ने कहा था,
0: किसी की हत्या न करना ही अहिंसा नहीं। ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचता है या स्पष्ट रूप से किसी के शरीर को पीड़ा पहुंचती हो, वह हिंसा है। इसलिए किसी को अपशब्द कहना, किसी के लिए बुरा सोचना या किसी की निंदा करना, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, क्रोध और घृणा करना तथा लोलुपता और अत्याचार जैसे कृत्यों को हिंसा की संज्ञा देनी चाहिए। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को तिल तिल करके पीड़ा देना, किसी को भूखा रहने के लिए विवश करना और शोषण करना हिंसा नहीं तो और क्या है?
1: गांधी जी सारे संसार को एक मानते थे। राज्यों के बीच की सीमाओं को वे मानव द्वारा बनाई कृत्रिम रेखाएं समझते थे। तभी तो उनके उद्गार ये विचार लिए हुए थे,
0: मैं इस संसार में तब तक रहने के लिए तैयार नहीं जब तक सारा संसार एक नहीं बन जाता। हमारा लक्ष्य है सारे विश्व से मित्रता। मैं असीम प्रेम और बुराई के विरोध में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तत्पर हूं। अपने पड़ोसी देशों को सहयोग देने में न कोई बंधन है और न ही कोई सीमा। ईश्वर ने कभी किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया है। ये तो हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं।
1: जिस वस्तु का बलिदान महात्मा गांधी स्वयं नहीं कर सकते थे, उसकी अपेक्षा वे दूसरों से भी नहीं करते थे। अपनी किसी कमजोरी को वो कभी क्षमा नहीं करते थे, लेकिन दूसरों की कमजोरी को सहन करने का उनमें उतना ही साहस था। वे इस तथ्य से

भलीभांति परिचित थे कि मामूली सी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी व्यक्ति को कठिनतम परिश्रम करना पड़ सकता है। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक में महान आत्मा महात्मा गांधी के अनेक उदाहरण इस संबंध में भरे पड़े हैं।

अभी आपने सुना रूपक महान आत्मा, लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। इसके साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से। इसे गाया है सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश ने। गीत गुलजार का है, संगीत ए आर रहमान का।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

कार्यक्रम का अगला गाना दीपाक्षी खलीता और अल्तमश फरीदी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है घूमर। गीत लिखा कौसर मुनीर ने, संगीत अमित त्रिवेदी का है।

आइए अब सुनते हैं शेखर रावजियानी, शादाब फरीदी और फरहान शबरी की आवाजों में निर्जा फिल्म का गाना। इसे लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत विशाल खुराना का है।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा

0: चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में राज रिबूट फिल्म का गाना। इसे लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत जीत गांगुली का है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: कार्यक्रम का अगला गाना शिल्पा राव की आवाज में है। फिल्म का नाम है गुलाल। गीत और संगीत पीयूष मिश्रा का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए अब सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में भाग जॉनी फिल्म का गाना। गीत फैज अनवर का है, संगीत साजिद वाजिद का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुँचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति

0: भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 7

0: सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और

0: पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मारिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
3: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
1: महिला रिकर्व टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गाना आशा भोसले, अमित कुमार, रीमा लहरी और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है थानेदार। गीत अनजान का है, संगीत बप्पी लहरी का।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आशा फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: कार्यक्रम का अगला गाना शब्बीर कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है बेताब। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है RD बर्मन ने।

किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुनिए। फिल्म का नाम है यादों की बारात, गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची, पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना।

दिल देके देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

1967 में आई निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख अभिनीत फिल्म बहारों के सपने।

0: और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हा।

फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं। फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल दे के देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रही, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रही और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्ट्रेस

के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक की निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारेख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारेख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

सिंह नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांताक्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं।

0: डांस एकेडमी और सांता क्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।
1: सा,

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारानिया का नमस्कार। खत और कलम लिए बैठे हैं, सोच में डूबे हुए कि क्या लिख दें उन्हें दिल का हाल। पर कलम जैसे ही खत की ओर बढ़ती है, लफ्ज जैसे हवा में कहीं तैरने लगते हैं। कैसे उन्हें खत में कैद करें, कैसे उन्हें लिख भेजें दिल का हाल। ये हवाएं अपने साथ ले उड़ती हैं और हम गुम हो बैठते हैं उनके ख्यालों में।

ख्यालों का बुलबुला जब अचानक फूट पड़ता है तो याद आता है कि लिखने बैठे थे दिल का हाल, पर अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पाए। दूरी है जो परेशान कर रही है, तो क्या दूरी का यह एहसास लिख दें, या यूं लिख दें कि बे इंतहा मोहब्बत है तुमसे, अपनी मोहब्बत का इजहार ही लिख दें। तुमसे हुई हर मुलाकात याद आती है, तुम याद आते हो, क्या उन मुलाकातों का हसीन ख्याल लिख दें।

बार बार सोचते हैं कि तुम्हें क्या लिख दें, कैसे लिख दें, कहां से शुरू करें। दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार है कि कोई भी शब्द उसे पूरा ही नहीं कह पाएगा। मन करता है कि इस खत में अपना पूरा दिल ही रख दें, तुम्हें बता दें कि तुम्हारे बिना हर दिन कितना अधूरा है, हर शाम कितनी बेचैन है, हर रात कितनी खाली है, सिर्फ तुम्हारा नाम ही लबों पर हर पल रहता है। इस खालीपन में जब भी कलम चलाने लगते हैं तो सारे शब्द चुप्पी की चुनर ओढ़ लेते हैं और सिर्फ लिख पाते हैं तुम्हारा नाम।

साथ ही नहीं देती। फिर बस खत को देखते हैं और मन ही मन तुमसे बातें करते रहते हैं। शायद प्यार ऐसा ही होता है जहां सबसे ज्यादा कहने वाला दिल ही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। अब दिल में तुम जो रहने लगे हो तो आंखें खुली हो या हो बंद, सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पूछते हैं।

जानते हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो, तो मैं ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हम, बस तुम्हें देखते ही रहते।

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधे दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसीलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली खत मिली तो उसे खाली मत समझ बैठना। समझ लेना, जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम, उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे, और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा पाओगे।

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना। इसे हमने एल्बम गांधी फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर से आपको सुनवाया। आइए अब सुनते हैं हनुमान अंश फिल्म से ये पारंपरिक रचना। ऋषि पाठक की आवाज और उन्हीं का संगीत।

0: बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में हसरत जयपुरी का कलाम आपने सुना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का ही संगीत और इसे हमने लिया एल्बम गुलदस्ता से।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
2: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कतील राजस्थानी का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे मिताली सिंह के आवाज में। भूपिंदर सिंह का संगीत मोहब्बत एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द खजाना कॉन्सर्ट। इस एल्बम से आपने सुना अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार

0: अंशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणव बिस्वास की आवाजों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आपने सुना। स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, संगीत संदेश सांडेले का।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुष। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारत।

0: की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सोचा ना था इस एल्बम इस गीत से आप माफ कीजिएगा इस फिल्म से आप सुन रहे थे केके की आवाज में गीत इरशाद कामिल के बोल संदेश शांडिल्य का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: वेल डन अब्बा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इला अरुण और साथियों की आवाजें, इला अरुण और डेनियल जॉर्ज के बोल और शांतनु मोहित्रा का संगीत। कल इला अरुण भी होंगे हमारे साथ लाइव विविध भारती की सालगिरह के जश्न पर।
1: हम मनाएंगे जश्न।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। मिर्ज़िया डेयर टू लव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मीमी खान और शंकर महादेवन की आवाज़ें, गुलजार के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सचिन देव बर्मन का संगीत मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से ये गीत आपने सुना।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प

0: से
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुल गया, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने। शंकर जयकिशन का संगीत लव इन टोक्यो फिल्म के इस गीत में। आपको बता दें आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत की ये एक लंबी श्रृंखला है जिसकी आज 13वीं कड़ी आप सुन सकते हैं। और रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा रूपक महान आत्मा, लेखन और निर्देशन गुरमीत रामलमीत का। इस वक्त विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर आज उन्हीं की फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में शामिल हैं।

0: के बोल राहुल देव बर्मन का संकेत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री आशा पारेख अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

लता मंगेशकर की आवाज में जिद्दी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मेरे सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, ओपी नैयर की तर्ज।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री आशा पारेख की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज पर ये गीत आप सुन रहे थे असर जयपुरी के बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म कन्यादान।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दो बदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। रवि की तर्ज शकील बदायूनी के बोल। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आनंद बख्शी के बोल के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता देते हैं आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाएंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो आज की इबारत है, गम दर्द तन्हाई ये भी तो जीवन का हिस्सा है। कोई रात की तन्हाई में आवाज न देने की बात कहता है तो कोई दर्द हद से गुजरने पर गाने लगता है। दुख दर्द को जीने और उससे लड़ने के सभी के अपने अपने तरीके होते हैं। दर्द हमेशा दुख भी कहां देते हैं। दर्द दिल की बातें यूं ही तो आशिक नहीं किया करते। मिलने की खुशी के साथ भी तो जुदाई का गम जुड़ा ही होता है। सुनहरे सपनों के टूट जाने का डर भी तो मन में यूं ही समाता है। हर खुशी एक डर साथ लिए आती है कि वो कहीं खो ना जाए, बीत ना जाए। जब कोई खूबसूरत याद या खुशी बीत जाती है तो हम उसके लौट आने की कामना भी करने लगते हैं। बीते हुए दिन क्या कभी वापस आए हैं? खुशी को बचाए रखने की चाह में हमने वो पल भी तो डर डर के ही बिताए हैं। वही दुख के हर पल को हमने भरपूर जिया है। हर आने वाला पल जाने वाला है ये जानते हुए भी हर दुख को ज्यादा से ज्यादा जीते हैं और खुशी के लम्हे को डरकर। क्या आपका भी यही है नजरिया? दुख दर्द और गम आए तो आप कैसे करते हैं उसका सामना? क्या है आपके जीवन का मूल मंत्र? जरा हमें भी बताना। ये है आज की भारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं कई शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। और आपने बहुत सी बातें लिखकर भेजनी भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ हमारे साथियों ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन किया है उन महापुरुषों को। हम भी विविध भारती परिवार की ओर से नमन करते हैं उन पुरुषों को, महापुरुषों को। और साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और आपकी बातें तो हम तक पहुंच ही रही, लेकिन एक बात जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि किस बात पर सबसे ज्यादा दुख आपको होता है, ये हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हमने आवाज ही किसकी पहचानने के लिए कहा था और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हमारी गलती ना हो उस समय यदि कोई गलत ठहराने लगे तो बड़ा दुख होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्म से लेकर नदी होने तक किसी न किसी को बिछड़ने का डर, जब दर्द हद से गुजर जाए तो परिस्थिति हो या इंसान को तोड़ देती है और सारे दुख दर्द को गले लगाकर खुद को मजबूत बनाकर इंसान जीने लगता है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, हम बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया है हमें गम और दर्द के बारे में और किस तरह से वो उससे निजात पाते हैं। हमारे एक साथी कहने, गम आने वाली खुशियों की आहट देता है, दर्द जख्म के ठीक होने की राह देता है, तन्हाइयों का तो क्या जनाब, वो खुद को खुद से मिला देता है। गम दर्द और तन्हाई आने वाली खुशियों का गुलदस्ता हो सकता है। आने वाले पल पर भरोसा रखिए, कुछ भी स्थायी नहीं होता। क्या ही खूबसूरत बात हमारे साथियों ने लिखी। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि इन दिनों मेरा इन्हीं से पाला पड़ा है, दर्द गम और तन्हाई कह रहे हैं। तो हमारे आज का ये कार्यक्रम सांत्वना का एक रूप होगा, अब इंतजार है दिन के 1 बजने की। तो भाई हम इन्हें बिल्कुल सांत्वना तो देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जैसा कि हमारे साथी ने लिखा कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं, बीत ही जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि संसार के रचयिता ने हर इंसान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसके जीवन में सुख और दुख आते ही हैं, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सुपरस्टार हो या क्लब बॉय, हर इंसान को सिर्फ सुख ही सुख मिले तो कौन परमात्मा को याद करेगा। इसलिए दुख के समय सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर को ही याद करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। ये बात भी इन्होंने अपने साथ में लिखी है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जीवन में दुख और दर्द तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें दुख दर्द तन्हाई और गम की परवाह न करते हुए उस पल को आनंदमय बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि जैसे कड़ी धूप के बाद सुकून देने वाली छांव आती है, ऐसे ही हर दुख और दर्द हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए हमें सुकून भरे उस पल का इंतजार करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमें ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपने गम से हाथापाई नहीं कह सकते,

अपने गम से किस तरह से आप निजात पाते हैं? क्या पूरे वक्त, कई लोगों की आदत होती है कि वो पूरे वक्त दुख में डूब जाते हैं पूरी तरह, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जब भी बड़े से बड़ा दुख भी आए तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप किस में समझते हैं खुद को इन दोनों ही कैटेगरी में से? और हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और किसी ने इसे लिखा।

आशा भोसले की आवाज में हम साया फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा शेवन रिजवी ने, ओपी नैयर का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने हमें दिया। हमारे एक साथी कहने के दुख दर्द में विविध भारती हमारा साथी रहता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि गम भी मिला, दर्द भी मिला, तन्हाई भी मिली, जिंदगी की राह में हर रंग की परछाएं भी मिली, हमने मुस्कुराकर हर जख्म को सीने से लगा लिया, तभी तो इस सफर में हमें खुद से मुलाकात भी मिली। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गमों की बातें अगर हो रही है तो कह रहे हैं कि खुशी और दुख हमारी जिंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, लेकिन दुख आने पर लोग निराश हो जाते हैं

0: मेरा मानना है कि दुख इंसान को सबसे अच्छा साथी होता है। दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और अपने पराये की पहचान भी करवाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा वक्त की दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी के समय पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और दुख के वक्त पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, मतलब जीवन में कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, रात के बाद सुबह आती ही है। दर्द, दुख और तन्हाई भी हमारे लिए एक नई ऊर्जा, उम्मीद और आशा लेकर आती है। खुशी तलाशने पर जिंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती है। वहीं हमारे साथी कहने की जिंदगी में हर पल को खुशी से जी लेना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं पर कुछ यादें आखिर तक साथ निभाती है। और एक ऐसी ही याद बनने वाली है कल विविध भारती के सालगिरह के जश्न पर। तो सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

विविध भारती के इस जश्न में तो आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में। और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल लाइव भी, जिन्हें शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, जैसा कि हम रोजाना सुरीला सफर कार्यक्रम में ही करते हैं। लेकिन कल मौका खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मौका आपको मिलता रहेगा। और हमारे साथ कई सितारे होंगे, जैसे कि ईला अरुण और तिग्मांशु धूलिया और साथ ही अनु मलिक भी, तो इनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। क्या पता आपके सवाल शामिल हो जाएं और उनका जवाब दें आपके ये चहेते सितारे। फिलहाल विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम जारी है और हमारे एक साथी ने लिखा कि आज 2 अक्टूबर केवल तारीख नहीं बल्कि भारत के दो महान सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को याद करने का दिन है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जो दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी और अहिंसा का मार्ग हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा बन देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इन महापुरुषों की जो सीख है, उन्हें अगर हम अपने जीवन में ले आए तो सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम एक संयमित जीवन जीना सीख जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब दिल को सतावे गम, तब छेड़ सखी सरगम, सात सुरों में बड़ा ही दम है, बहते आंसू जाए थम, छेड़ कोई सरगम। ये गाना सुनने पर जब आप बहुत तकलीफ में है तो सचमुच गाना दिल को बेहद सुकून देता है। सुर की मधुरता उनके शब्द आपको जख्मों पर मरहम के समान लगते हैं और आप उसमें खो जाते हैं। सारी नकारात्मकता आपकी आंसुओं के साथ बह निकलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो भाई, ऐसा ही एक सकारात्मक गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म का ये गीत है, किसने लिखा, आवाज तो आप पहचान ही लेंगे।

समझौता फिल्म का ये गीत इंदिवर के बोल, कल्याण चौहान जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब कोई वादा करके मुकर जाता है तो मुझे दुख होता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, स्पष्ट रूप से इनकार क्यों नहीं कर देते। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां उनकी भी ऐसी होती हैं कि वो एक वादा तो करते हैं लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाते, तो वो बातें, वैसे आपका कहना तो ये सही है कि अगर वो बातें करते हैं तो उन्हें सीधे सीधे आपको बता देना चाहिए कि भाई ये कुछ परिस्थितियों की वजह से हम उसे नहीं निभा पा रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, केवल धैर्य से काम लेते हैं, दुख सुख हर परिस्थिति में, सुख में अति उत्साह नहीं दिखाते, पता है कुछ समय बाद दुख तो आएगा ही, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, जो भी अगर उस वक्त हमारे साथ सुख है तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, और अगर दुख है तो धैर्य और संयम से ये सोचते हुए कि ये दिन बीत जाएंगे और हम आगे जरूर आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को हौसला देकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सुख में हम ज्यादा सुखी ना हो कि भाई ये दिन बीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक डर ही हुआ कि हम अपने सुख को ठीक से नहीं जी रहे, उसका आनंद नहीं ले रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे रात की तन्हाइयों में आवाज देकर मेरी नींद खराब अगर कोई कर देता है तो फिर सोने की कोशिश करता हूं, फिर मुझे नींद आती है, दुख से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह के मजाहिया कमेंट भी हमारे साथी कर रहे हैं और शायद इसी तरह वो अपने जीवन में एक हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बनाए रखते हैं, और फिर ऐसे वक्त में तो दुख बिल्कुल भी आसपास नहीं फटकता, क्योंकि लोगों के लिए भी वो एक चहेते मित्र बन जाते हैं जहां पर वो अपनी इन बातों से लोगों का जो मन है वो हल्का रखते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख जीवन की पहचान होता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कहने के गम, दर्द और तन्हाई, इन सबको साधना बड़ा कठिन काम है। वर्तमान में रहते हैं तो बीते समय का हम पछतावा ही करते रह जाते हैं, आज के समय को गंवाते हुए भविष्य की चिंता में हम डूबे रहते हैं और सोचते हैं हम समय के साथ चल रहे हैं, मगर दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं, बस जिस क्षण हम समय की टंकार पहचान लेते हैं तब सब ठीक हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में खुशी है तो गम भी है, खुशी स्थायी नहीं होती और ना ही गम, इसलिए खुशी को दिल से अपनाने की जरूरत है, डर से मन अशांत होने लगता है, दुख दर्द तन्हाई बिछड़ना ये जीवन

0: का हिस्सा है और इसे भी धैर्य से समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन में इतने दर्द मिले हैं कि उनको याद करके सिर्फ आंसू निकल आते हैं, बट इन दर्द से, इन गमों से जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो उस हौसले को याद किया कीजिए तो आपके चेहरे पर जरूर एक मुस्कान आएगी, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जिंदगी में गम, दर्द और तन्हाई से भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करना ही जीवन जीने की कला है। और आगे वो कहती हैं कि जैसा कि मशहूर पंक्तियों में कहा गया, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम बुलाना जिंदगी है। ये तीनों रात के उस अंधेरे की तरह हैं जहां जिसके बाद आने वाली सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यदि आप इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो इसे एक पड़ाव माने, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन पहले सुनाते हैं कल के कार्यक्रम के लिए जुड़ा एक संदेश और उसके बाद कार्यक्रम में गीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात गमों की, दुखों की और साथ में इनसे निपटने की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है उस पर हो रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया में दुख होता है जब मैं किसी के कई पोस्ट को लाइक और कमेंट करता हूं, अगर वो मेरे पोस्ट पर कमेंट तो दूर, लाइक करना भी गवारा नहीं समझते और टेक्स्ट कमेंट को टेक्स्ट में जवाब न देकर सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। तो और साथ ही ये कहते हैं कि दुखों को कम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सोशल मीडिया है, व्यस्त रहें दुख टकरा टकरा कर भाग जाएगा। भाई यहां हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी के पोस्ट को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और वो आपकी पोस्ट को कमेंट या लाइक नहीं करते हैं, तो यहां आपको ये सोचना चाहिए कि आपने लाइक और कमेंट तो अपनी मर्जी से की है, किसी ये लेन देन तो नहीं है। अगर आपको किसी की पोस्ट या कमेंट अच्छी लगती है और आप उसे लाइक करते हैं तो वो आपका काम है, आपने उस काम को खत्म कर दिया, तो कर्म आपने कर लिया। लेकिन उसके लिए किसी फल की चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो कमेंट आपकी जो है या पोस्ट जो आपकी है वो लाइक करने लायक ना लग रही हो, या उन्हें लग रहा हो कि मैं बाद में लाइक करूंगा, व्यस्त हूं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपना दिल जलाना है तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया आपके लिए दुख का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन आप अपना कर्म करते जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उसे लाइक कीजिए, कुछ कहने का मन करता है तो कमेंट कीजिए और बड़ी ही आसानी से आप इस चीज से उबर जाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने में आपका मन भी लग जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के दो पहलू हैं, एक गम एक खुशी, ये दोनों समय में विविध भारती हर पल साथ रहती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है, जीवन में कुछ भी नहीं ठहरता, जो आया है सो जाएगा, गम हो या खुशी कुछ नहीं रुकता, आने वाला पल जाने वाला है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं आगे की बात कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना जाने बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं हर समय बुरा ही बोलते हैं, बुरा तो सुनकर बहुत बुरा लगता है पर अब केवल चुप रहते, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, भाई चुप रहना ही यहां सही है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, तो इस बात से हम भी सहमत हैं। हम महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते हैं जानते हैं तो हम उनके जैसे ही या उन्हीं की तरह हम पूरी तरह से नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जीवन और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी जो सीख है उसे लेकर हम अपने जीवन और व्यक्तित्व को कुछ बदल सकते हैं, अच्छा और सकारात्मक कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवा दें। बताइए किस फिल्म का गीत है, लिखा किसने है।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहने कि आमतौर पर हम खुद का घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्टेशन, एसटी स्टैंड, बस, रेल, रास्ते, सार्वजनिक स्वच्छता घरों को हम लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। इस बात का अफसोस होता है और दुख होता है। वहीं मालिक साथी कह रहे हैं कि दुख और बादल एक जैसे होते हैं, जब तक बरसते नहीं तब तक हल्के नहीं होते। जीवन के दायरे में अनेक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है जब गम, दर्द और तन्हाई का एक साथ सामना होता है। कुछ पीड़ाएं इतनी वेदना देती हैं कि अश्रु की धार भी अपने साथ नहीं बहा पाती, बस हृदय के किसी कोने में चुपचाप ठहर जाती हैं। जीवन ऐसा ही सारा खेल मानव मन की कल्पना का है। वहीं हमारे साथी कहने कि जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल होता है तो वो अपने में क्रोध से युक्त स्वयं को पाता है, जो दुख का मूल कारण होता है। यदि ऐसे ही माहौल में ये गीत मस्तिष्क में आ जाए फिर कहने ही क्या कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब गलती नहीं होती और कोई इल्जाम लगाए तो दुख होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बात जीने की चली है तो मेरी जिंदगी के 44वें साल तो खुशियों में बीते, तब हमें गमों का आभास भी नहीं था, इसलिए इसकी जरा भी परवाह नहीं की। ये वक्त भी बदल जाएगा। अब जब वक्त एकदम पलट गया तो गमों की परवाह हो रही है। यही परवाह हम उस समय किए होते तो ये गम इतना तकलीफ ना देते। अब

तो फिर एक इंतजार लिए जा रहे हैं कि वक्त फिर बदलेगा। अब कब बदलेगा यही पता नहीं, तो जरूर बदलेगा वक्त आपका भी, हम ये कहते हैं, क्योंकि वक्त की तो ये आदत ही होती है, बदलता ही है और बीतता ही है। कभी भी दुख के जो वक्त है वो पूरी तरह उसी तरह नहीं रहता, बस जरूरत है कि हम उससे बाहर निकलें। तो आप हमें ये बताइए कि अगर कभी आपको दुख हुआ तो आप क्या करते हैं? गम और दुख भरे गीत सुनकर और दुख में डूब जाते हैं या सकारात्मक गीत सुन के अपने मन को बदलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या दुख में बैठे रहते हैं, दुख को आत्मसात कर लेते हैं, या सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, मन को बदलने की कोशिश करते हैं? ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको एक ऐसा ही गीत सुनवाते हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को फिल्म गीत के लिए फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल

0: होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम बातें कर रहे हैं कि अगर हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह से उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुख आए उसके बाद सुख आए, दुखी वाले दिनों को नहीं बोलना चाहिए, उसे प्रेरणा मिलती है। जब दुख होता है तो अपने एक पुराने मित्र को याद कर लेती है, उसकी अच्छाई को याद करके मन को शांति मिलती है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। एक और साथी ये कह रहे हैं, जब किसी दुख या दर्द से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसे किसी के साथ साझा करने के बजाय एक काम करता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत सा तालाब है, वहां तालाब के किनारे बैठता हूँ, फिर अकेले जी भर कर रोता हूँ। उसके बाद हमारे गांव में बेसहारा राह भटके हुए बच्चों के लिए एक रिमांड होम बना है, उन बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाता हूँ, उन बच्चों को मेरा गाया गीत सुनना अच्छा लगता है, उन्हें गाने सुनाता हूँ, किशोरदा के गाने, और ये सब चक्कर में मेरा दुख दर्द मुझसे किनारा कर लेते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ईश्वर करे विविध भारती श्रोता परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रहें, दुख भरे दिन कभी ना आए, ऐसी कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख और सुख बने ही रहते हैं जीवन में, ऐसा भी हम कहना चाहते हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप सभी के साथ से हमारे जो भी दुख हैं दर्द हैं वो सब हम से दूर हो जाते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि श्रोतागण आज के गीत बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत बार दुखी होती हूँ तो दर्द भरे गीत सुनती हूँ, अगर कुछ खुशी हो तो खुशी वाले गीत सुनती हूँ, बचपन से ही विविध भारती सुनने आई हूँ। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि कुछ पल के लिए दुखी होता हूँ फिर सोचता हूँ कि मेरे दुख होने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या दुनिया बदल जाएगी। भाई इस सोच की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि ज्यादा देर दुखी रहने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मैं इससे बदल सकता हूँ दुखी रहकर, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको एक हौसला मिलेगा कि आपको आगे बढ़ना है और खुद के इस दुख को दूर करना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं दुख से संबंधित बात कहते हुए कि कई दुख मैंने झेले हैं, अब तक जीवन में उन दुखों को मैं सहन भी कर लेता हूं, परंतु जब मैं किसी अपने को या रिश्तेदार को या मिलने वाले को इस संसार से परलोक के लिए बिछड़ते देखता हूं तो ये दुख मेरे लिए असहनीय हो जाता है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता, फिर भी परमपिता परमेश्वर की इच्छा मानकर दुख सहते हुए अपने आप को शांत करना ही पड़ता है। वहीं हमारे एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट किया है जिन्हें हम हिंदी में सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुख दर्द ये सब जो भी हैं वो अनुभव हैं, एक ऐसे अनुभव हैं जो हमारे खुशी और आनंद के पलों को और ज्यादा अच्छा कर देते हैं और ज्यादा मीठा बना देते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। और आगे उन्होंने लिखा, जीवन चक्र में कोई चीज शाश्वत नहीं है, बंद मुट्ठी आए थे खुले हाथ जाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। मैं आज राजकोट आया हूँ, पल दो पल समय मिला तो लिख लिया, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खुश इंसान कहीं नहीं रह सकता, अगर वो दिन भर खुश रहने के नए नए तरीके खोज ले तो खुश रह सकता है, जैसा कि विविध भारती पर गीत सुनकर और ऐसी कई चीजों में आप खुश रहने का तरीका खोज सकते हैं। तो भाई देखिए, पहले आपने ही कहा कि खुश रहने के चाहे तो कहीं खुश नहीं रह सकता, फिर आपने ही तरीका बताया कि किस तरह से खुश रह सकते हैं, तो भाई खोजा जाए तो सारी चीजें संभव है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द की आग में जलना ही होता है, जलना ही नहीं होता है, गम से आगे भी कोई रास्ता होता है, आंख छलके तो इस बहाने इसे बहने दो, मत रोको, बोझ सीने को का रोने से ही कम होता है, वक्त मरहम है हर एक जख्म का ये याद रखो, शब जितनी भी हो काली सवेरा होता है, अपने खुद को संभालो, जरा ठहरो, देखो हर अंधेरे के पीछे एक चिराग होता है। भाई क्या बेहतरीन बात आपने लिखी, और वाकई ऐसा होता है कि जब भी वक्त में ऐसा कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत गम है तो वो दूर हो ही जाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि जिंदगी में गम आए हैं खुशियां भी, मैंने बस इतना सीखा कि दुख को दिल पर बोझ बनाकर नहीं एक अनुभव बनाकर जीना चाहिए, और जब खुशी मिले तो उसे कल की चिंता में नहीं आज की मुस्कान में जी लेना चाहिए, हर दर्द हमें कुछ सिखाकर जाता है और हर खुशी एक खूबसूरत याद दी जाती है, इसलिए अब गम से शिकायत नहीं और खुशियों से कोई डर नहीं, जो पल मिला है उसे पूरे दिल से जी लेना चाहिए, शायद यही जिंदगी है, गम आए तो थोड़ा रो भी लें, खुशी आए तो खुलकर हंस भी लें, आखिर दोनों ही जिंदगी के रंग हैं। मेरा मानना है कि हर पल को स्वीकार करके मुस्कुराते रहना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। भाई क्या ये खूबसूरत बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाए। वैसे आप में से बहुत से लोगों के लिस्ट में ये गीत शामिल है, बताइएगा किसने लिखा है।
2: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अब

दोस्ती फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख का रोना रोकर लोगों की हमदर्दी हासिल करना कतई सही नहीं होता। ऐसे लोगों से समाज ऊब जाता है। जो लोग मेहनत से दुखों को जीत लेते हैं उन्हें समाज से मान सम्मान मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कोई दुख कभी नहीं हुआ जिसे मैं कुछ बयां करूं, छोटे मोटे दुख तो आते जाते ही रहते हैं। भाई क्या कहने आपके, ऐसा विचार मन में जब रहता है तो सारे दुखों से हम पार हो जाते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख दर्द से कौन नहीं वाकिफ है, सिक्के के दो पहलू की तरह गम और खुशी भी आते जाते रहते हैं। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है, हंसते हंसते जीना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का संगम है, एक जाता है दूसरा आता है। मैंने कोशिश यही रहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर जिया जाए, सही यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर संतुलन कोई बना लेता है तो उसके बाद दुख और सुख हो, चाहे कोई भी कैसा भी एक माहौल हो, कैसा भी भाव हो, हम संतुलित ढंग से रहते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। वैसे हमने अपने साथियों के जो लिस्ट है उसमें एक गीत देखा था जिसका जिक्र तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम तो

देख चुके हैं वो लिस्ट में गीत, और हमारी लिस्ट में भी शुरुआत से वो गीत शामिल था, तो क्यों ना वो गीत आपको सुनवाए, क्योंकि एक जश्न भरा गीत है वो। तो चलिए बताइएगा कि इस गीत में संगीत किसका है।

कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है और वो कार्यक्रम सुन रही हैं, तो इसका मतलब कि वो इस कार्यक्रम में तो शामिल ही हैं। तो किसी न किसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल रहते हैं। जिस तरह से शामिल कर रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, और आपको बताना है कि फिल्मी पर्दे पर किस पर फिल्माया जाता है, फिल्माया हुआ दिखाया गया है ये गीत।

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत तिवारीलाल की संगीत से सजा था। हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें दुख होता है जब वो

तो ये पल भी जाने वाला है। गोलमाल फिल्म के इस गीत में नायक अमोल पालेकर नजर आते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल विविध भारती के जश्न में आप सभी से मुलाकात होगी। फेसबुक पेज पर लाइव बने रहिएगा हमारे साथ। सुरीला सफर कार्यक्रम आज का बस यही समाप्त करते हैं।

0: मेरे बीते हुए दिन।
1: गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, छोरी जरा हंस दे।

बिजली से उजली बड़ी भोली तेरी दुनिया, चलने में तीर है कितनी शरीर है बड़ी जिद्दी मेरी मुनिया, गोरी जरा

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, बड़ी शिद्दत से जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं तो कई बार हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभार हम थोड़े निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी हर कोशिश हमें सबक जरूर देती है कि हमें हारना नहीं है बल्कि इन कोशिशों को जारी रखना है, कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो आज भी हमारी सखियां अपने दिल की बात हमसे कहना चाहती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए। देखते हैं सबसे पहले किस सखी का कॉल हमारे कार्यक्रम में जुड़ गया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे जुड़ी हैं इस समय फोन कॉल पर।
1: मोहिनी बैगा बात कर रही हूँ।
0: मोहिनी जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं तो प्रदेश शहडोल से लगाई हूँ।
0: शहडोल से
1: जी, बहुत सालों के बाद कॉल लगा है मैम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती से बात हो रही है।
0: जी, बहुत सी सखियां हैं जो इस समय कोशिश करती रहती हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन इतनी सारी सखियां क्योंकि एक साथ में कोशिश कर रही होती हैं तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इस बात की खुशी है कि आज आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। बताइए, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं हमें?
1: कि नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारा देखने के लिए चीज है।
0: आपके घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं।
0: बताइए, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत और उजाले उनकी यादों की और आज के मेहमान
0: जी,
1: बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं पसंद करती हूँ।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनना है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: तो मोहिनी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है मुस्कान फिल्म से। आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम निर्मला गिरी है, हम मयूरभंज उड़ीसा बारीपदा से बोल रहे हैं।
0: अपने बारे में कुछ बताइए निर्मला जी, आप क्या करती हैं?
1: हम तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई का मशीन है, सिलाई कर लेते हैं। पति है जो लाइन का कंट्रैक्टरी करते हैं,
0: जी
1: और एक बच्ची है 8 क्लास में, CBSE में पढ़ती है 8 क्लास।
0: जी
1: लेकिन हमारा एक दोस्त है राउरकेला शक्तिनगर में,
0: जी
1: तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हर वक्त उसको याद करते हैं। और रेडियो सुनना वो सहेली ने मुझे सिखाया। जब उसका घर हम जाते थे,
0: जी
1: माना कि हमसे वो सीनियर था, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बहुत दोस्ती थी। वो हमको रेडियो सुनना ना सिखाया, हेलो सहेली सब कुछ सिखाया। उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है। हमारा एक ही सपना था कि वो भी रेडियो सुनती है, उसके पास वो मेरा याद पहुंचाना था। तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसके नाम से गीत सिर्फ तुमका एक मुलाकात जरूरी है, सर उसको सुनाना।
0: निर्मला जी, आप बहुत भावुक हो रही हैं अपनी दोस्त को याद करके, और उन्होंने ही आपको रेडियो सुनना सिखाया, आपको बताया सुनने हैं कौन कौन से कार्यक्रम, तो वो भी जरूर आपका कार्यक्रम सुन रही होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी आवाज वो सुनेंगी तो वो आपको जरूर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी दोस्त, जिसे आप बहुत याद करती हैं, तहे दिल से याद कर रही हैं, वो आपको मिल जाए। और आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं, ये भी आपने समर्पित किया है अपनी उसी दोस्त के नाम।
1: हाँ जी,
0: आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत जो आपने समर्पित किया है अपनी दोस्त को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: ग्राम कल्याणी घर से कामिनी पटेल।
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं
1: जी मैम।
0: अपने बारे में कुछ बताइए।
1: सिलाई मशीन करती हूँ, सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है
0: जी। आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: मैम जी, ऊर्जा काले कावा।
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, ऊर्जा काले कावा।
1: जी
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी है हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है
0: जी।
1: चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर है वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं क्या ठंड पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी।
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम। हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है।
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने हमसे,
1: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि लाइनें व्यस्त होती हैं तो इनका फोन नहीं लग
1: बिल्कुल
0: पाता,
1: बिल्कुल
0: तो आपको
1: जी।
0: इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
1: हाँ जी शुक्रिया जी। मैं
0: और
1: तो बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही,
0: जी
1: जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
0: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो
1: बिल्कुल
0: का
1: जी,
0: साथ
1: पढ़ते
0: बना हुआ
1: समय
0: है।
1: जी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तब तक मेरे मम्मी जागते थे, और ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी
0: और आज कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
1: जी। तो यही हर रोज सुरीला सफर, चलो सुन नहीं पाते स्कूल के टाइम में, बट
0: जी,
1: सखी सहेली घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
0: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ भी जाकर टेस्ट हो फिर तो सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
0: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
1: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
0: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
1: हो गए 10 साल तो हो ही गए
0: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
1: जी, मुश्किल ही है। इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल ही है।
0: बिल्कुल। और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
1: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
0: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं
1: जी
0: चीज।
1: मम्मी आपके बहुत फैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं
0: जी
1: की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं।
0: जी और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य।
1: जी
0: छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो रूही जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: जी, आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
0: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो
0: नमस्ते
1: दीदी। जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से सुलोचना कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: सुलोचना जी।
1: जी दीदी, पहली बार कॉल लगा तो दीदी बहुत खुशी हो रही है। दीदी हमारे यहाँ से बहुत सी सखियाँ कॉल करती हैं दीदी।
0: जितनी खुशी आपको है उतनी खुशी हमें भी है। तो बताइए सुलोचना जी, आप क्या करती हैं?
1: दीदी घर पे रहते हैं दीदी, घर का काम करते हैं दीदी। मम्मी पापा हैं हमारे, तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं। जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं दीदी। पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा। दीदी 10वीं तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ दीदी, हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ते थे दीदी हम सागर में।
0: जी
1: तो दीदी हमारी एक साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल।
0: तो इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
1: जी दीदी करेंगे दीदी, अगर बनेगा प्रयास तो करेंगे दीदी हम।
0: जी, और आपके क्या क्या शौक हैं सुलोचना?
1: दीदी जी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी। बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी, एक वो सुनती थी बहुत SMS की बहाने भी थी, इसके तरह 12 बजे आता था वो।
0: हाँ
1: तो दीदी वो सुनते थे, वो दीदी सखी सहेली तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
0: अच्छा, तो सुलोचना जी आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगते हैं दीदी, जैसे हेलो सहेली है, सखी सहेलियों में जो आप लोग दो दीदी आती हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताती है पकवान के बारे में, कैसे बना कुछ भी मतलब ये जानकारी देती हूँ आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी। अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी,
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा
0: जी आपको सुनवाते हैं वीरजारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ पूनम जी, आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद, और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है, और पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप बात कर रही हैं, बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती है हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए पूनम।
1: जी मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है विविध भारती में, और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम, मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ, गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम आज गीत सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं, ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के बाद में सुनना है। और मैम हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ, और मैं जरूर से सुनती हूँ क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बड़ी चहक है आपकी आवाज में, आप खुश हैं फोन लग गया तो आपका?
1: हाँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज चंचल जी से मेरी बात हो रही है, मेरी खुशकिस्मती है। और शुक्रिया उस रॉक का भी जिसने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खालिदा। तो आज बहुत सालों से ट्राई कर रही थी इस प्रोग्राम में, तो शुक्रिया रॉक का भी।
0: तो खालिदा जी, आपका ये पहली बार कॉल लगा है आज?
1: जी, पहली बार इस प्रोग्राम में कॉल लगा है।
0: और कश्मीर जहाँ से आपने कॉल किया है, ये वो शहर है जिसे जन्नत भी कहते हैं।
1: हाँ, जन्नत भी कहते हैं और जन्नत है भी, क्योंकि जो भी कश्मीर आता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो जब भी कश्मीर को ही पहुंचता है, यहाँ से जाने का फिर दिल और मन भी नहीं करता है।
0: और ये वो जगह है जहाँ हर समय पर्यटक आते जाते रहते हैं, तो बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर।
1: हाँ, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। और साथ साथ अगर सखी सहेली का संग हो और विविध भारती का संग हो तो फिर तो क्या ही बात है।
0: क्या बात है खालिदा जी, हमें भी ऐसे श्रोताओं का साथ बहुत अच्छा लगता है जो बड़ी शिद्दत से सभी प्रोग्रामों को सुनते भी हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप बताइए, आपके पसंद के कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
1: विविध भारती पे जो आता है, आपकी फरमाइश आता है, या जयमाला आता है, सितारा आता है, या सुबह फोन इन प्रोग्राम कुछ भी आए ना इसमें, तो हम सब सुनते हैं। और जो भी ईमेल जैसे कभी कभी इसके प्रोग्राम आता है तो वो भी सब सुनते हैं। जयमाला सुनती हूँ, रोज में सुनती हूँ। और जो सखी सहेली है इसका भी इंतजार करती हूँ, और पिटारा में जो आपकी फरमाइश आता है वो भी सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये तो हुई रेडियो सुनने की बात है, रेडियो सुनने के अलावा आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या है?
1: जी, मैं टेलरिंग के साथ करती हूँ, और यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा कढ़ाई होती है। जो पश्मीने के शाल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो यहाँ पे वही ज्यादा काम होता है।
0: और वो कढ़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उसके चाहे शॉल हो, चाहे हम सलवार सूट पहने, दुपट्टे पहने, सभी चीजें बहुत नायाब लगती हैं, तो वो कढ़ाई का काम करती हैं आप?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ और टेलरिंग के साथ भी थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे कढ़ाई भी होती है। तो यहाँ की जो लड़कियाँ है, अगर पढ़े भी लेकिन कढ़ाई साथ साथ उनका शौक भी होता है और कमाई के लिए वो भी जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और इसीलिए इस काम की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाजारों में भी उसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमें सुनना है मेरी जंग, इस मूवी का वो सॉन्ग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
0: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: अभिलाषा यादव है मेरा नाम।
0: अभिलाषा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जयपुर से बात कर रही हूँ आपसे।
0: अपने शहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: तो मेरा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान से है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में।
0: नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, तो
1: जी
0: किस तरह का काम रहता है, अपने काम के बारे में बताइए हमें।
1: ऑल टाइम हमें 24 आवर्स की सर्विसेज होती हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जाना भी पड़ता है। पर अभी मैं 24/7 में केवल एक टाइम की ही ड्यूटी करती हूँ, क्योंकि मेरी डिस्पेंसरी ड्यूटीज हैं अभी फिलहाल।
0: तो इसमें आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही समय आपका नियत समय है, उसमें ही आप
1: हाँ
0: काम
1: जी
0: कर रही
1: बिल्कुल
0: हैं। फिर आप रेडियो सुनने के लिए भी समय निकाल पाती हैं।
1: बिल्कुल, मैं दोपहर में शाम को मेरा मन होता है उस अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ कि भाई कब मुझे क्या सुनना है, तो मैं सेट कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना टाइम।
0: और नर्सिंग फील्ड से आप कब से जुड़ी हैं?
1: करीब 2007 से।
0: यानी कि करीब करीब 20 साल होने आए हैं आपको इस काम में,
1: हाँ जी हाँ
0: तो अच्छा खासा अनुभव है आपका, और जॉब ने आपको बहुत कुछ सीख भी दी होगी।
1: बिल्कुल, हमारा वर्क ही ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार अलग तरीके का पेशेंट होता है, हर बार अलग तरह से केयर करनी होती है,
0: जी
1: तो बहुत सी चीजें, नई चीजें भी सिखा के जाती है हमें। और हमारा जो प्रोफेशन है वो लर्निंग प्रोफेशन ही है।
0: जी ये सेवा भाव का काम है, और अगर आप सेवा भाव से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जिन परिवारों के मरीजों की आप देखभाल करते हैं, वहां से आपको दुआएं भी बहुत
1: वो
0: मिलती
1: हमें बहुत,
0: होंगी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बहुत दुआएं देके जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, क्योंकि वो हमें

0: समझते हैं जैसे डॉक्टर उनके लिए भगवान है, उसी तरह से हम जब उन्हें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको यही फीलिंग आती है, वो खूब हमें ब्लेसिंग्स देके जाते हैं।
1: तो बड़ा अच्छा काम है आपका। और बताइए अभिलाषा जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: आप हमें ताल मूवी से गाना है, इश्क बिना क्या जीना है, ये सुनवाएं प्लीज।
1: तो ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो सहेली
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, बताइए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी हैं?
1: जी मैम, रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठी गांव कंठी से।
0: तो आपके बहुत खूबसूरत शहर से आपने फोन किया है, अपने शहर के बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: पहाड़ी एरिया, यहाँ पर तो मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा इलाका है यहाँ का और यहाँ पर मतलब कि गर्मी कम लगती है।
0: गर्मी का तो एहसास होता ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। और
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: जो
1: मैम,
0: मौसम आने वाला है वो तो बर्फबारी का और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है।
1: जी बिल्कुल मैम।

0: तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी है, सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है इधर।
1: तो रिंकू जी आप क्या करती हैं?
0: जी मैम मैं घर का ही काम करती हूँ।
1: घर के कामों में भी आपकी पसंद का काम कौन सा होता है?
0: जी मैम मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब कैसे घर में मैं किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है।
1: तो बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैम गाना मैंने दोस्ती फिल्म का सुनना है, राई मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और ये सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, मतलब सभी अपनी सहेलियों को बहुत शुभकामना, और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
1: तो आपकी जो सभी सहेलियां हैं उनको भी हम ये गाना सुनवाते हैं और हमारे सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं आशा चौहान बोल रही हूँ, गुजरात राजकोट से।
0: गुजरात राजकोट से। तो आस्था जी, अब जो मौसम आने वाला है वो गरबे का मौसम है। आज से बस 9-10 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा और गुजरात में तो बहुत धूम रहती है, तो
1: बिल्कुल
0: आपको गरबा करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, मुझे देखना अच्छा लगता है।
0: तो
1: मैं हमेशा से डांस पर्सन नहीं रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। मैं साहित्य पसंद किया है मैंने हमेशा, और मैंने कविताएं भी लिखती हूँ, और मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, कल्चरल प्रोग्राम। और मैं भारत के हर कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे भारत के अंदर ही घूमना पसंद है, सारे स्टेट्स के कल्चरल एक्टिविटीज देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के नज़ारे देखना।

0: देखना और बस साहित्य से जुड़ी हूँ इसलिए कुदरत को देखना अच्छा लगता है ज्यादा।
1: और ये जो देश प्रेम का भाव है आपके अंदर ये बहुत सुंदर है। तो आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप लिखती भी हैं, अपनी लिखी कोई कुछ पंक्तियां आपको अगर याद हैं, कोई कविता याद है तो हमारे साथ साझा करना चाहेंगी?
0: हाँ जरूर, मैंने दो कविताएं चुनकर रखी है, जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने
1: जी,
0: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो, क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और सब, तो उसके ऊपर कविता लिखिए, शहर को गांव बना दो, पेड़ों की बौछार लगा दो, पानी की फुहार बहा दो, शहर को गांव बना दो, खेती की हरियाली बिछा दो, चिड़िया का अंबार लगा दो, मौसम का हाल बता दो, बाइक नहीं साइकिल चला दो, शहर को गांव बना दो। मैं इसके बाद ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ, 55 इयर्स की उम्र है मेरी।
1: और साइकिल चलाने से एक फायदा तो ये है कि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है और आपकी सेहत है वो भी बरकरार रहती है। और जैसा अभी आपने कविता सुनाई कि शहरों को गांव बना दो, तो वाकई अगर ऐसा हो सके तो जो खुशहाली है वो फिर से लौट आएगी और जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक कम हो सकेगा।
0: बिल्कुल, लेकिन 80% लोग जो नहीं सोच पाते या सोचते नहीं है क्योंकि ज्ञान की कमी है और शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उनको भी सोचने की जरूरत है, तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं होगा हम अगर सब समझ जाएंगे।
1: और आप जैसे जागरूक लोग जब तक हैं तो एक ही इंसान आगे और चार लोगों को जागरूक कर सकता है। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। हम चाहेंगे कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो बताइए आपकी पसंद क्या है?
0: मेरी पसंद का जीवन मृत्यु पिक्चर का कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा, झिलमिल सितारों वाला सुना दीजिएगा। मेरी दूसरी कविता जो मैंने निकाल रखी थी उसकी भी चार पंक्तियां सुना देना चाहती हूँ आपको।
1: जरूर सुनाइए।
0: धरा के हम सफर, उस कविता का नाम है रखा है मैंने, समंदर को के मोती चुरा कर सीप बना दो। इंसान कुछ भी कर सकता है, सीप में से मोती निकलती है, लेकिन मोती में से भी सीप बना सकते हैं इंसान, ज्वेलर है वो बना सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करे कुदरत के लिए और इंसानियत के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी, नेगेटिव ना करे। समंदर के मोती चुरा कर सीप बना दूं, कर्म क्षेत्र की राही हूँ मैं दीप बना दूं, उद्वेग मन के मीत बना दूं, हार नहीं जीत बना दूं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं, आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, तो बस अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहिए और इसी तरह से रेडियो के माध्यम से इन्हें साझा करती रहिए। और आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु, इस फिल्म का गीत जो आपने सुनना चाहा है।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और हर बार जब ये कार्यक्रम होता है तो कुछ नई सखियां हमारे साथ जुड़ती हैं और कुछ ऐसी सखियां जो हर थोड़े अंतराल पर हमें कॉल करती रहती हैं। तो जिन सखियों का कॉल आज भी नहीं लगा वे निराश ना हो, हो सकता है अगली बार आपका कॉल लग जाए, इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा। जिन सखियों ने हमसे बात की हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें ताकि नई सखियों को भी कॉल करने का मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन जब हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है उस समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, एक अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।